अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का आराधना चैनल। आइए अब सुनते हैं श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

ये आकाशवाणी का आराधना चैनल है। आइए सुनते हैं आकाशवाणी श्रीनगर के बालटाल और पहलगाम से अमरनाथ यात्रा पर विशेष प्रसारण।

आकाशवाणी श्रीनगर से मैं आपकी उद्घोषक तस्लीम इस दिव्य और अत्यंत पवित्र प्रभात में श्री अमरनाथ जी यात्रा के इस विशेष प्रसारण में आप सभी श्रद्धालुओं और श्रोताओं का हृदय की गहराइयों से स्वागत करती हूँ। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। श्रोताओं, जब किस्मत आगे बढ़ती है और श्रद्धा में मन में जगती है तो रास्ते खुद ब खुद बाबा बर्फानी के दरबार की तरफ मुड़ जाते हैं। ये यात्रा केवल एक यात्रा नहीं है, ये आत्मा की शांति और उस परमेश्वर प्रेम का अनुभव है जो हर शिव भक्त को एक नए रूप में जन्म देता है। आज के इस विशेष प्रसारण में हम आपको इस पवित्र यात्रा के हर एक रंग, हर एक अनुभव और हर एक जानकारी से जोड़ेंगे। हमसे जुड़े रहिए और इस दिव्य आनंद का अनुभव कीजिए।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का विशेष यात्रा प्रसारण जो एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स, न्यूज़ ऑन एआर ऐप की आराधना चैनल तथा डीटीएच के माध्यम से प्रसारित किया जा रहा है। इस विशेष प्रसारण के दौरान हम आप तक श्री अमरनाथ जी यात्रा से जुड़ी हर महत्वपूर्ण और प्रमाणित जानकारी पहुँचाएंगे। यात्रा मार्ग की वर्तमान स्थिति, मौसम की जानकारी और साथ ही साथ प्रशासन द्वारा जारी ताज़ा सूचनाओं से भी आपको लगातार अवगत करते रहेंगे और आपसे यही कहेंगे कि इस यात्रा के दौरान अपना ध्यान रखें। हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी यात्रा जो है पवित्र यात्रा मंगलमय, सुखद और सफल रहे।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का विशेष यात्रा प्रसारण जो एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स, न्यूज़ ऑन एयर ऐप की आराधना चैनल तथा डीटीएच के माध्यम से प्रसारित किया जा रहा है। इस विशेष प्रसारण के दौरान हम आप तक श्री अमरनाथ जी यात्रा से जुड़ी हर महत्वपूर्ण और प्रमाणित जानकारी पहुंचाएंगे। यात्रा मार्ग की वर्तमान स्थिति और मौसम की जानकारी और साथ ही साथ प्रशासन द्वारा जारी ताज़ा सूचनाओं से भी आपको लगातार अवगत करते रहेंगे। इस वक्त जम्मू भगवती नगर के बेस कैंप से हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता जावेद मेहराब। जी जावेद साहब,
1: जी पवित्र श्री अमरनाथ जी की तीर्थ यात्रा का ये पर्व यहाँ जम्मू के पहले बेस कैंप भगवती नगर में जारी है। श्रद्धालुओं का पवित्र तीर्थ यात्रा में जोश खरोश भी देखते ही बनता है और इस कड़ी में यहाँ तभी रिवर फ्रंट जो है श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण बनकर उभरा है।
0: जी,
1: यहाँ प्रतिदिन होने वाली महातवि आरती, बोटिंग और लाइट एंड साउंड शो का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु हर शाम पहुंच रहे हैं। कल भी शाम होते ही तवि रिवर फ्रंट पर धार्मिक आस्था और आधुनिक पर्यटन का अनोखा संगम देखने को मिला। जम्मू स्मार्ट सिटी की ओर से विकसित तवि रिवर फ्रंट पर अमरनाथ यात्रा के दौरान विशेष व्यवस्थाएं की गई है। इसमें यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को पवित्र श्री अमरनाथ जी के दर्शन के साथ साथ शहर के प्रमुख पर्यटन स्थल का भी आनंद लेने की कोशिश की जाती है। कुछ कल देर शाम के कार्यक्रम के दौरान जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर डॉक्टर दिवांश यादव भी मौजूद थे। उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया, वहीं श्रद्धालुओं से बातचीत भी की। वहीं उन्होंने तीर्थ यात्रा के व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने और तीर्थ यात्रा को स्वच्छता के साथ जोड़ने पर भी जोर दिया। मैं आपको बताऊं कि म्युनिसिपल कमिश्नर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जम्मू जो है वो लगातार तीर्थ यात्रा को स्वच्छता के साथ जोड़ने के लेकर बहुत जोर भी दे रही है और वहीं उनकी स्पेशल टीमें जो है वो यहाँ विभिन्न ट्रांजिट कैंप्स में और शहर के लगभग हर कोने में स्वच्छता को बनाए रखने के लिए यात्रा के दौरान खास तौर पर अलग से टीमें बनाई गई है, ताकि कर्मचारी जो है वो अलग अलग जगहों पर जो ट्रांजिट कैंप्स बनाए गए हैं वहाँ लंगर और खाने पीने और दूसरी व्यवस्थाएं की गई है, वहाँ स्वच्छता का भी ध्यान रखा जाए। उसके साथ साथ जो शहर के विभिन्न पर्यटक स्थल है उन से भी श्रद्धालुओं को रूबरू कराया जाए, उसको लेकर लगातार यहाँ जो है कोशिशें जारी है। वहीं जम्मू के प्रमुख स्थलों और तवि रिवर फ्रंट की महाआरती को पर्यटन से जोड़ने का भी आह्वान हो रहा है, जिससे श्री अमरनाथ तीर्थ यात्रा और माता वैष्णो देवी के भी तीर्थ यात्रियों को शहर में एक यादगार अनुभव से परिचित कराया जा सके। बुधवार शाम तवि रिवर फ्रंट पर सूर्यपुत्री तवि नदी पर महाआरती का सामूहिक नजारा और श्रद्धालुओं की शिव भक्ति में लीन होते देखा जा सकता था। वहीं श्री अमरनाथ जी के तीर्थ यात्रियों के लिए एक बहुत बड़ी जानकारी है कि वार्षिक तीर्थ यात्रा की पारंपरिक प्रतीक छड़ी मुबारक के इस वर्ष के कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। महंत दीपेंद्र गिरी ने साधुओं और आम जनता की जानकारी के लिए कार्यक्रम जारी कर दिया है। सदियों पुरानी परंपरा के मुताबिक पवित्र यात्रा की औपचारिक शुरुआत 29 जुलाई व्यास पूर्णिमा के पावन अवसर पर पहलगाम में भूमि पूजन के साथ होगी और इसके बाद 12 अगस्त को छड़ी मुबारक को श्रीनगर के ऐतिहासिक शंकराचार्य मंदिर ले जाया जाएगा और 13 अगस्त को छड़ी मुबारक शारिका भवन मंदिर

0: लगाई जाएगी। 15 अगस्त को दशनामी अखाड़ा अमरेश्वर मंदिर और 17 अगस्त को नाग पंचमी के अवसर पर दशनामी अखाड़ा में छड़ी पूजन संपन्न होगा। महंत दीपेंद्र गिरी ने प्रदेश की सरकार को पत्र लिखकर सदियों पुरानी इस परंपरा के लिए व्यवस्था करने का आग्रह किया है। ये एक बड़ी जानकारी है और बड़ी जो बड़ा जो प्रोग्राम होता है इस सदियों पुरानी तीर्थ यात्रा के लिए, हर वर्ष ये होता है, इसका एक प्रोग्राम बाजाबता निकलता है कि किस तरह से छड़ी मुबारक की का पूजन होगा और पूजन में अलग अलग जगहों पर छड़ी मुबारक को ले जाया जाएगा। उसके बाद जो यात्रा शुरू होगी उसी को लेकर जो जो महंत दीपेंद्र गिरी है उन्होंने प्रदेश की सरकार को पत्र लिखा है और इसमें इस पारंपरिक जो ये यात्रा है और जो छड़ी मुबारक का जो प्रोग्राम है उसके लिए व्यवस्थाएं करने का आग्रह किया है। इस तरह से पवित्र श्री अमरनाथ जी की पावन तीर्थ यात्रा के सफर में आने वाले सभी पड़ावों को लेकर तैयारियां पहले से की जाती हैं, क्योंकि जो तीर्थ यात्रा है ये एक पावन यात्रा है और इसके लिए जो जो जरूरी पड़ाव होते हैं उनमें जो तैयारियां होती है उसको लेकर पहले से ही तैयारियां शुरू की जाती हैं, ताकि जो श्रद्धालुओं के लिए तीर्थ यात्रा आसान भी हो और सुविधाजनक भी बनी रहे। आज तीर्थ यात्रा पर रवाना होने वाले श्रद्धालुओं की कुल संख्या 4,640 रही। आज भी एक बहुत बड़ा जत्था जो है वो यहाँ से निकला, जिसमें बालताल की ओर 1,626 और पहलगाम की प्राचीन मार्ग की तरफ 3,014 श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल रहे और यात्रा में शामिल पुरुषों की संख्या 3,448 रही, महिलाओं की संख्या 1,075, बच्चे 5, साधु 99 और साध्वी 23 रहे। 171 वाहनों में घाटी की ओर बाबा बर्फानी के दोनों मार्गों की तरफ ये यात्रा अग्रसर है और जो तीर्थ यात्री है वो लगातार दर्शन कर जो एक बहुत बड़ा आंकड़ा दूसरे ही हफ्ते में लगभग 3.5 लाख श्रद्धालु अभी तक दर्शन कर चुके हैं, जो एक बहुत बड़ी कामयाबी भी है, बहुत बड़ा आंकड़ा भी है और लगातार तीर्थ यात्री जो है दर्शन कर वापसी अपने घर की तरफ जम्मू के विभिन्न जो जो तरीके हैं जैसे रेल का माध्यम है, सड़क का माध्यम है, यहीं से होकर गुजरते हैं और जम्मू के जो जो माहौल है वो बहुत भक्तिमय भी बना हुआ है और उसके साथ साथ यहाँ तीर्थ यात्रा से एक अलग नजारा देखने को मिल रहा है। जी
1: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जावेद मेहराब जी, श्रोताओं को पवित्र यात्रा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए
0: बहुत शुक्रिया आपका।
1: आकाशवाणी सभी तीर्थ यात्रियों का दिल से स्वागत करता है और प्रार्थना करते हैं कि सभी तीर्थ यात्रियों की यात्रा जो है सुखद, सफल और मंगलमय रहे, यही हमारी मनोकामना है।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी विशेष यात्रा प्रसारण जो FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, OTT प्लेटफॉर्म वेव्स न्यूज ऑन एयर ऐप की आराधना चैनल तथा DTH के माध्यम से प्रसारित किया जा रहा है। इस विशेष प्रसारण के दौरान हम आप तक श्री अमरनाथ जी यात्रा से जुड़ी हर महत्वपूर्ण और प्रमाणित जानकारी पहुँचाएंगे। यात्रा मार्ग की वर्तमान स्थिति और मौसम की जानकारी और साथ ही साथ प्रशासन द्वारा जारी ताज़ा सूचनाओं से भी आपको लगातार अवगत करते रहेंगे। इस वक्त अनंतनाग से हमारे संवाददाता तारिक साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी तारिक साहब,
1: जी बिल्कुल तस्लीमा जी, आपका और सभी श्रोताओं का मेरा शुभ प्रभात। आज जुलाई की 17 तारीख और बाबा अमरनाथ जी यात्रा का 15वां दिन पहलगाम के अमरेश्वरी पर्वतों और इसके आसपास के क्षेत्र में मौसम सुहाना और मन भावन बना हुआ है।
0: जी
1: आस्था, उत्साह और सफलता से पूर्ण इस पावन यात्रा में आज सुबह 4 बजे धनुलाधार शिविर और निजी होटलों, हटों और दीगर रिहायशों से हजारों श्रद्धालुओं का जत्था चंदनवारी पहुंच चुका है, जहां यात्री आगे की यात्रा के लिए पंजीकरण और जांच की प्रक्रिया में मशगूल है। यात्रा प्रशासन के नियमों के अनुसार 12 बजे के बाद प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाता है और इसके बाद किसी भी यात्री को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जाती है। इधर शेषनाग और पंचतरणी में रात के विश्राम के बाद शिव भक्तों की पवित्र अमरनाथ गुफा के ओर पदयात्रा जारी है। प्रतीक्षा है कि वो कुछ ही देर में पवित्र गुफा पहुंच जाएंगे।
0: जी
1: और दूसरी जान जो जम्मू के भगवती आधार शिविर से 4,640 यात्रियों पर मुश्तमिल 16वां जत्था कश्मीर घाटी की ओर रवाना दवा है। ये जत्था दोपहर तकरीबन 12 बजे काजीगुंड ट्रांजिट कैंप पहुंचेगा, जहां से बालतर और पहलगाम के लिए अलग अलग कल रवाना किए जाएंगे। इनमें से 105 छोटी बड़ी वाहनों में मुश्तमिल जत्था, जिसमें 3,014 यात्री शामिल हैं, कटी कड़ी सुरक्षा के बीच बाबा बर्फानी के प्राचीन मार्ग और रवाना किया जाएगा। इन यात्रियों में 2,403 पुरुष,

0: 572 महिला, 31 साधु और 8 साध्वी शामिल है। ये श्रद्धालु दोपहर तकरीबन 1 बजे नोनवन बेस के पहुंचेंगे और रात वही विश्राम भी करेंगे। यात्रा प्रशासन ने शिव भक्तों के लिए आवश्यकता से भी बढ़कर सुविधाएं उपलब्ध रखी है। सभी आधार शिविरों में भजन, भोजन, विश्राम और दीगर आवश्यक सहूलतों के विशेष व्यवस्था की गई है। पूजा अर्चना की सामग्री से लेकर सफरी वस्त्र और रोजमर्रा की उपयोगी सामान तक सभी चीजें यात्रियों के लिए आसानी से उपलब्ध है। नलौन आधार शिविर की अगर हम बात करें तो यात्रियों के कयाम के लिए लगभग 600 टेंट, 3 बड़े हटस और 18 छोटी हटस की व्यवस्था की गई है, जबकि भोजन के लिए 13 लंगर सेवाएं भी मसरूफ है। इसके अलावा 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल एक आरजी हॉस्पिटल भी कायम किया गया है। नलौन आधार शिविर में एक साथ लगभग 10,000 से ज्यादा यात्री जो तमाम आवश्यक सुविधाओं के साथ रात और दिन का विश्राम या कयाम कर सकते हैं। तो 57 दिनों पर मुश्तमिल श्री अमरनाथ जी यात्रा में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या पर अगर तशखीस डालें तो मौसूल आंकड़ों के अनुसार 3 जुलाई से कल शाम तक जो 3,43,882 भक्तों को बाबा बर्फानी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जबकि बीते दिन यानी कल दिन की जो हम बात करें दर्शन की, तो दर्शन करने वाले यात्रियों की संख्या 19,357 दर्ज की गई है। और जो अभी अभी हमें अभी भी दर्शन जो दर्शन से फारिग हुए आज सुबह सुबह सादिक, तो वो लगभग 700 से आगे हैं। तो इस वर्ष यात्रियों की संख्या जो पिछले वर्ष के मुकाबले में तकरीबन जो हमें आंकड़े निकाले गए हैं तो 28% ज्यादा रिकॉर्ड की गई है और देश के विभिन्न भागों से श्रद्धालुओं की आमद का सिलसिला निरंतर जारी है। और अब बात मौसम की करें, जो पहलगाम और मौसम एक साथ चलता है, क्योंकि पहलगाम वो रेशरों और ऊंचे पर्वतों की जो वादी है
1: जी।
0: तो जब हम पहलगाम की बात करें तो मौसम की बात करना जरूरी बनता है
1: जी।
0: तो पहलगाम और इसके जो आसपास के क्षेत्र और यात्रा मार्ग खासकर, इस पर मौसम सुहाना और सुखद बना हुआ है, लेकिन मतलब अबरालूद है। हम मौसम विभाग की जो वेदर एडवाइजरी के अनुसार आइंदा 48 घंटों के दौरान पहाड़ी इलाकों में दरमियाना दर्जे वर्षा होने का इम्कान है। मौसम विभाग के अनुसार इस समय पहलगाम से पवित्र गुफा तक का तापमान 14.2 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया है, जबकि दिन का दर्जे हरारत जो तापमान जो है 26 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है और रात का न्यूनतम तापमान जो है 12 डिग्री सेल्सियस रहने का संभावना है। इसके साथ ही वातावरण में नमी की जो मात्रा है इस वक्त 80% दर्ज की गई है। जम्मू से पवित्र गुफा तक के यात्रा मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, ऊंचे पहाड़ों क्षेत्रों और नगर व कस्बा जात में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस, केंद्रीय सुरक्षा बल और दीगर एजेंसियां अधिक सुरक्षा उपकरणों के साथ लैस होकर दिन रात अपनी सेवा अंजाम दे रहे हैं, ताकि यात्रा पुरमन सुखद और सफलता के साथ अपनी निर्धारित समय पे संपन्न हो सके। तो टीम वर्क कल्चर के तहत विभिन्न सरकारी विभागों के बीच बेहतर तालमेल के साथ यात्रा के सभी इंतजाम की निगरानी की जा रही है और हर गुजरते दिन के साथ यात्रा से जुड़े सभी बंदोबस्त बराबर जारी है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जितने भी श्रद्धालु हमें मिले हैं इतने दिनों में, इतने 14-15 दिनों में जितने भी मिले हैं, सभी यात्रु सभी यात्री जो है सभी शोभक जो है वो प्रशासन के द्वारा किए गए इंतजाम जो है या इस समुदाय जो है इस पे वो बिल्कुल मुतमईन है और कोई शिकायत नहीं कर रहे।
1: और ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि हमारे जो ये श्रद्धालु है वो बहुत खुश है, मुतमईन है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही सबसे बड़ी बात होती है कि सबसे जो बड़ी गारंटी मिलती है वो हमें श्रद्धालु से ही मिलती है कि वो, क्योंकि वो मेहमान है हमारे, और अगर वो मुतमईन है तो हम बिल्कुल बिना झिझक ये कह सकते हैं कि यात्रा सफलता के साथ जो सरकारी इंतजाम या जो जो भी इंचार्ज है इस चीज के, जो भी इस पे लगे हुए लोग हैं, वो सब सही काम कर रहे हैं।
1: स्थानीय लोगों का कितना सहयोग है इस बीच?
0: बिल्कुल, स्थानीय लोगों में अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल आप नोयो टंग से ही देखेंगे कि हर जगह पे लोग उनके खुशामद करते हैं और उन्हें उनकी सेवादारी में भी जुड़े हैं। और अगर आप ज्यादा बात करें तो इस क्षेत्र में, इस घाटी में आप जब आप उनको देखेंगे तो वो लोकल ही लोग हैं जो दिन रात उनकी

0: मुसीबत में लगे हुए हैं। आप सरकारी तौर पे जब देखेंगे तो जम्मू कश्मीर पुलिस है हमारी, जम्मू कश्मीर पुलिस सिर्फ सिक्योरिटी के लिए जो तैनात रखी गई है, लेकिन हम बिल्कुल देख रहे हैं 14-15 दिनों से हम देख रहे हैं कि कितने फोटोग्राफ, कितने वीडियोज जो हमें मिले हैं, जो या हमने खुद भी देखे हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के जो एहलकार होते हैं, जो मुलाजिम होते हैं, वो किस तरह यात्रियों को अपने कंधों पे उठाते हैं, उनके सामान को उठाते हैं, लेते हैं बराबर वो पवित्र गुफा तक, बिल्कुल उनको अपनी ड्यूटी के बगैर उस सुविधा भी अपनी वो सेवादारी भी लेके चलते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि लोगों की जो स्थानीय लोगों की जो बात है वो बिल्कुल इस यात्रा के साथ साथ है, उनकी सेवादारी में और उनकी खिदमत में पेश पेश है।
1: जी हम ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है कि सभी तीर्थ यात्रियों को प्रसन्न और स्वस्थ रखे, सुखद रखे। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया तारिक साहब, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत शुक्रिया तस्लीमा।

0: इस विशेष प्रसारण को आप एफएम बालतल 103.7 MHz, एफएम पहलगाम 100.1 MHz, ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स, न्यूज़ ऑन एयर ऐप के आराधना चैनल तथा डीटीएच के माध्यम से भी सुन रहे हैं। अब करते हैं राष्ट्र मार्ग का रुख, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता तस्कीन साहब। जी तस्कीन साहब, राष्ट्रमार्ग के हवाले से क्या अपडेट्स है?
1: जी शुक्रिया। राष्ट्रीय राजमार्ग ट्रैफिक है, बिल्कुल बहाल है, ट्रैफिक चल रहा है। सुबह से ही बादल पूरे छाए हुए हैं पूरे राष्ट्रीय राजमार्ग के क्षेत्र में, रामबन बाड़ा सेक्टर में। और अभी जो श्री अमरनाथ यात्रा का जो दोनों काफले जम्मू से सुबह ही रवाना किए गए हैं, तो उसमें जो बालतल वाला काफला है वो बानहाल पहुंचने वाला है, बस करीबन से 7 किलोमीटर पीछे है अभी और गुजर रहा है बानहाल की तरफ। जबकि पहलगाम के रास्ते जो 105 गाड़ियों में 3014 श्री अमरनाथ यात्री जा रहे हैं कश्मीर की तरफ, तो वो अभी चंद्रकूट के लंगर साइट्स पर पहुंच चुके हैं। और कुछ वक्त पहले उनने चनानी नाशरी टनल पार किया है और चंद्रकूट का जो लंगर वहां पर लंगर साइट से यानी यात्रा निवास है वहां पर इनको खाने पीने जो सुबह का नाश्ता वगैरह कराया जाए। जबकि बानहाल पहुंचने वाला जो ग्रुप है इन्हें यहाँ 4 बसें हैं, ये 1624 इसमें यात्री हैं, तो उन्हें यहाँ बानहाल में सुबह का जो नाश्ता वगैरह कराया जाए, उसके बाद इन दोनों काफलों को जो सिक्योरिटी का सिस्टम है कश्मीर की तरफ से उनके हवाले किया जाए और कश्मीर की तरफ ये रवाना होंगे। इस दौरान जो कल से जो 2 बजे के बाद और 3 बजे के बाद जो ट्रैफिक को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, खासकर जो अमरनाथ यात्री हैं और जो टूरिस्ट होते हैं उन्हें भी कल मतलब 3 बजे के बाद रोजाना 3 बजे से फिर बाद रोका जाता है, बानहाल से आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी जाती सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उन्हें भी आज सुबह ही करीबन 6 बजे के आसपास ये जो 1000 के करीब दोनों जगह पर यात्री जो कल रात से रोके गए थे उन्हें भी कश्मीर की तरफ रवाना किया गया है। इस दौरान कल एक इंसिडेंट हुआ था, बस एक को ने आग पकड़ ली थी जो श्री अमरनाथ यात्रा की बस थी जो बालतल से वापस जम्मू की तरफ जा रही थी, तो इसमें करीबन 54 जो पैसेंजर्स थे, इसमें 47 जो पिलग्रम्स थे, श्री अमरनाथ यात्री थे, 2 ड्राइवर थे, कंडक्टर 2 थे और उनके साथ जो कुक होते हैं खान सामान जिसे कहा जाता है, तो वो साथ थे लंगर मतलब बनाने के लिए, खाना वाना बनाने के लिए इस बस के। तो लेकिन मौजजाती तौर सभी लोग बजे जो बस थी इसमें वो मुकम्मल तौर से खाकस्तर हो गए, जलकर राख हो गए। रामबन के करोल इलाके में इंसिडेंट कल करीब 4 बजे के आसपास, 3:30 बजे 4 बजे के दरमियान ये पेश आया था। तो उनमें जो यात्री थे इनका जो फिर बाद में वो उनका नुकसान वुकसान अगर किसी का हुआ उसका एक बाजाबता लिस्ट वगैरह बनाई गई और देर शाम कल देर तक उनको वहां पर वो जो मतलब जो फॉर्मेलिटीज थी की गई, उसके बाद उनको एक नई बस में जम्मू की तरफ रवाना किया गया। और इस वक्त बिल्कुल जो बाकी ट्रैफिक अभी रुका हुआ है और श्री अमरनाथ यात्रा के दोनों काफले जम्मू से कश्मीर की तरफ बढ़ रहे हैं और पहलगाम और बालतल से जो वापस जम्मू जा रहे हैं वो भी आइंदा 1-1.5 घंटे में बानहाल पहुंचा जा
0: जी। मोहम्मद तस्कीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। हम प्रार्थना करते हैं कि इसी तरह से हमारे सभी जो तीर्थयात्रा है वो खुश रहे, सुखद रहे और महफूज रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए श्रोताओं, अब आकाशवाणी दिल्ली से समाचार समाप्त करते हैं।
2: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
3: चल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दिल्ली सरकार ने नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 400 करोड़ रुपए के स्टार्टअप और इसके नीतिगत ढांचे को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के परिणाम घोषित किए।

0: गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 5 लोगों को पाटन जिले से गिरफ्तार किया। और क्रिकेट में इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय मैच में भारत को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस प्रोजेक्ट के साथ भारत ने एक नया वैश्विक कीर्तिमान स्थापित किया है और उन कई देशों से आगे निकल गया है जो अभी इस तकनीक का परीक्षण कर रहे हैं। जहां जर्मनी और चीन जैसे देश आमतौर पर 2 या 3 कोच वाली छोटी हाइड्रोजन ट्रेन चलाते हैं, वहीं भारत ने 10 कोच वाली ट्रेन विकसित की है। इस ट्रेन की क्षमता लगभग 2600 यात्रियों को ले जाने की है, जो दुनिया भर की अन्य हाइड्रोजन ट्रेनों की तुलना में सबसे ज्यादा है। 3200 हॉर्स पावर की क्षमता के साथ यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक है। यह ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करके ट्रेन को आगे बढ़ाती है। इस प्रक्रिया में केवल जल वाष्प उप उत्पाद के रूप में उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप रेल संचालन के दौरान कार्बन उत्सर्जन शून्य होता है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, जींद।
0: प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। जींद के बाद वे चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने के बाद SCS नगर मोहाली रेलवे स्टेशन, श्री मुक्तसर साहिब और श्री अनंतपुर साहिब रेलवे स्टेशनों सहित 20 राज्यों के 74 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का जलंधर से ही वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। इन स्टेशनों का पुनर्निर्माण दुनिया के सबसे बड़े स्टेशन पुनर्विकास प्रोग्राम में से एक अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत किया गया है। वह जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन से संत रविदास एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। यह भारत के दो सबसे पवित्र आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली डायरेक्ट रेलगाड़ी है, जो हफ्ते में 3 बार चलेगी। प्रधानमंत्री नंगल डैम, तलवाड़ा, मुकेरिया नई रेल लाइन प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर दौलतपुर चौक करतौली नई रेल लाइन का भी उद्घाटन करेंगे और करतौली अंबाला ट्रेन सर्विस को हरी झंडी दिखाएंगे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: प्रधानमंत्री ने कहा है कि वे आज तीनों राज्यों के लोगों के बीच विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने को लेकर उत्साहित हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं का लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इनका सबसे अधिक लाभ देश की युवा शक्ति को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। इनमें केरल के 6 रेलवे स्टेशन शामिल हैं। इन स्टेशनों के पुनर्विकास से राज्य में रेल बुनियादी ढांचे और यात्री सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है।

0: को जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है।

0: वार्षिक दिल्ली स्टार्टअप युवा महोत्सव का आयोजन करेगी। इसमें नवाचार करने वाले युवा, शैक्षणिक संस्थान, स्टार्टअप, निवेशक, उद्योग जगत और नीति निर्माता एक मंच पर आकर नए विचारों का प्रदर्शन करेंगे, साझेदारियां विकसित करेंगे और युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रेरित करेंगे। शुरुआत में यह नीति 11 राज्य विश्वविद्यालयों, 13 सरकारी वित्त पोषित कॉलेजों, पॉलिटेक्निक संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और सरकारी स्कूलों में लागू की जाएगी। सरकार पात्र शैक्षणिक संस्थानों में इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने और उन्हें मजबूत बनाने के लिए एक मुश्त वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इसका उद्देश्य राजधानी को देश के अग्रणी नवाचार और उद्यमिता केंद्र के रूप में विकसित करना है। दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी का परिणाम घोषित कर दिया है। 11 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी मेडिकल, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। सभी उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उपलब्ध हैं। एजेंसी ने कहा है कि परिणाम समय पर घोषित किए गए हैं ताकि उम्मीदवारों के लिए प्रवेश और काउंसलिंग कार्यक्रम सुचारू रूप से चलता रहे। इस वर्ष भारत के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में स्थित 5,440 केंद्रों पर लगभग 20 लाख उम्मीदवारों ने पुनर्परीक्षा दी थी। गुजरात आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने प्रतिबंधित पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े एक कथित आतंकी मॉड्यूल की जांच के सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। एटीएस के अनुसार इन आरोपियों को पाटन जिले के खड़ियाल गांव से गिरफ्तार किया गया। इन लोगों के नाम इस महीने की शुरुआत में गिरफ्तार किए गए जैश ए मोहम्मद के 8 कथित सदस्यों से पूछताछ के दौरान सामने आए थे। जिला न्यायालय ने सभी आरोपियों को 24 जुलाई तक एटीएस की हिरासत में भेज दिया है। गृहमंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, शासन, कानून व्यवस्था और विकास से संबंधित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री शाह कल सिलीगुड़ी में जुमाकांच सीमा चौकी का दौरा करेंगे और 18वीं बटालियन सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। गृहमंत्री पश्चिम बंगाल में सीमा संबंधी मुद्दों पर एक बैठक की भी अध्यक्षता करेंगे। उत्तर प्रदेश में आज माई भारत राष्ट्रीय युवा स्वयं सेवक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसके बाद अगले 2 दिन चिंतन शिविर का आयोजन होगा। इसका आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय कर रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया करेंगे। केरलम में आज से रमाण मास का शुभारंभ हुआ। केरलम में मलयालम पंचांग के कंगंडम महीने को रमाण मास के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान श्रद्धालु आध्यात्मिक शक्ति और मानसिक शांति के लिए रामायण का पाठ करते हैं। आज से करगिडगम महीने की शुरुआत हो गई है। इसके साथ ही आज से राज्य के अनेक घरों और मंदिरों में प्रतिदिन रामायण पाठ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी से बात की और उनके और पिता अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के निधन पर शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कतर के अमीर की अमर विरासत दोनों देशों को उनकी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने में मार्गदर्शन करती रहेगी। उन्होंने भारत और कतर में भारतीय समुदाय के प्रति स्नेह और भारत कतर संबंधों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को भी याद किया। ब्रिटेन के ब्रैडफोर्ड में पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास के बाहर कश्मीरी प्रवासियों ने पाकिस्तान के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन किया। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में बुधवार को प्रदर्शनकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में दमन की ओर ध्यान देने की अपील की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सुरक्षा बलों ने लोगों की हत्या, जबरन हिरासत, घरों पर छापेमारी और आम नागरिकों, महिलाओं तथा बच्चों के खिलाफ हिंसा की है। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने वामपंथी चरमपंथी आतंकवादियों को देश में प्रवेश करने से रोकने के लिए नई वीजा प्रतिबंध नीति लागू की है। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि ये नीति ऐसे तत्वों को रोकने के लिए है जो हिंसक गतिविधियों के जरिए लोगों की सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और राजनीतिक प्रक्रियाओं को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल देखने के लिए रविवार को न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में मौजूद रहेंगे। फाइनल मुकाबला मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। फुटबॉल विश्व कप संयुक्त रूप से राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया और न्यू जर्सी में होने वाले फाइनल के साथ इसका समापन होगा। फुटबॉल में भारत की महिला टीम को एएफसी अंडर 17 अगले वर्ष होने वाले एशियन कप क्वालिफायर के ग्रुप ई में मलेशिया, सीरिया और इराक के साथ रखा गया है। भारत लगातार दूसरी बार महिला एशियन कप के लिए क्वालिफाई करने की कोशिश करेगा।

0: इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की पूरी टीम 44 ओवर में 233 रन पर सिमट गई। जवाब में इंग्लैंड ने 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। 3 मैचों की श्रृंखला अब 1-1 की बराबरी पर है। श्रृंखला का अंतिम मैच रविवार को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। नीट पेपर लीक के बाद अभूतपूर्व सुरक्षा के बीच आयोजित नीट यूजी 2026 का परिणाम घोषित होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खी है। हिंदुस्तान लिखता है, नीट यूजी का परिणाम जारी, सफल होने वालों में 58% छात्राएं। अमर उजाला के शब्द हैं, पंजाब के आर्यन और हरियाणा के पंशुल अव्वल, 19 बच्चों को 700 से अधिक अंक। अमेरिका और ईरान के बीच ताज़ा सैन्य संघर्ष को देखते हुए भारत ने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाया। जनसत्ता ने इस खबर को अपनी सुर्खी बनाते हुए लिखा है, होर्मुज पर जहाजों में भारतीय नागरिकों की तैनाती पर रोक, नौवहन प्रशासन महानिदेशालय का निर्देश। पुरी जगन्नाथ रथ यात्रा में भगदड़, एक श्रद्धालु की मौत, लोकसत्य की सुर्खी है। पत्र लिखता है, खराब मौसम और बारिश के बाद उमड़ी 10 लाख की भीड़। राजधानी में 16 साल के बाद सबसे लंबा मॉनसून ब्रेक। दिल्ली में अगले 4-5 दिन और अच्छी बारिश होने की उम्मीद बेहद कम, हिंदुस्तान की सुर्खी है। दैनिक भास्कर ने अनुमान शीर्षक से खबर दी है, दो नए सिस्टम से रफ्तार पकड़ेगा मॉनसून, 20 से उत्तर और मध्य भारत में तेज बारिश। 40 से अधिक देशों के साथ साझा समुद्री अभ्यास, 20 जुलाई से होगा, नवभारत टाइम्स की खबर है। पत्र लिखता है, कोची स्थित सदर्न नेवल कमांड में होगी ऑपरेशन की शुरुआत। लोकसत्य ने साइबर अपराध पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है, शीर्षक दिया है, डिजिटल भारत पर साइबर अपराध का साया। पत्र लिखता है, साइबर अपराध की सबसे चिंताजनक बात है कि इसकी कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती। दुनिया के कई देशों में बैठे अपराधी भारत के नागरिकों को अपना निशाना बना रहे हैं, ऐसे में सभी को सावधान रहना जरूरी है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दिल्ली सरकार ने नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 400 करोड़ रुपए के स्टार्टअप और इसके नीतिगत ढांचे को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के परिणाम घोषित किए। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 5 लोगों को पाटन जिले से गिरफ्तार किया। और क्रिकेट में इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय मैच में भारत को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to flag off India's first hydrogen-powered train from Jind Railway Station in Haryana this morning. Delhi government approves 400 crore rupees startup and incubation policy to promote innovation and self-employment. National Testing Agency declares results of NEET UG 2026 re-examination. Gujarat ATS arrests 5 persons from Patan district in connection with its probe into Jaish e Mohammed terror module. And in men's cricket, hosts England beat India by 4 wickets in second ODI to level 3 match series 1-1. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will visit Haryana, Chandigarh and Punjab today. During his visit to Haryana, the Prime Minister will flag off India's first hydrogen train between Jind and Sonipat at Jind Railway Station. He will also lay the foundation stone and dedicate to the nation various development projects worth around 14,700 crore rupees at Eklavya Stadium in Jind and address the gathering on the occasion. The launch of the first hydrogen-powered train marks an important step towards the adoption of clean and sustainable mobility in the railway sector. Designed, engineered and integrated in India, the train has been developed using indigenous technology, reflecting the country's growing capabilities in advanced railway engineering. With its introduction, India joins a select group of countries that have operational hydrogen-powered trains. These include Germany, Japan, China and the United States.

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन से हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। दिल्ली सरकार ने इख्तिरा और खुद रोजगार को बढ़ावा देने की खातिर 400 करोड़ रुपए मालियत की स्टार्टअप और इनक्यूबेशन पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इम्तिहानात के निकाद से मुतालिक एजेंसी ने नीट यूजी 2026 के दोबारा कराए गए इम्तिहान के नतीजों का ऐलान कर दिया है। गुजरात एटीएस ने जैश ए मोहम्मद तंजीम के दहशतगर्द गिरोह की अपनी तहकीकात के सिलसिले में पाटन जिले से 5 अफराद को गिरफ्तार किया है। और मर्दों के क्रिकेट में दूसरे एक रोजा मैच में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबरी हासिल कर ली है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के दौरे पर जा रहे हैं। हरियाणा के अपने दौरे में वजीर आजम जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के दरमियान हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। जनाब मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में तकरीबन 14,700 करोड़ रुपये मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। साथ ही वो इस मौके पर मौजूद लोगों से खिताब भी करेंगे। हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन का आगाज रेलवे के शोबे में माहौलियात के लिए साजगार और पायदार मोबिलिटी इख्तियार करने की सम्त एक अहम कदम है।

0: अंदरूनी मुल्क वसाइलों और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ये रेलगाड़ी बनाई गई है, जिससे जदीद तर्ज की रेलवे इंजीनियरिंग में भारत की बढ़ती हुई सलाहियत की अक्कासी होती है। इस तरह भारत उन चुनिंदा मुल्कों में शामिल हो गया है जहां हाइड्रोजन पर मबनी रेलगाड़ियां चलती हैं। इन मुल्कों में जर्मनी, जापान, चीन और अमरीका शामिल हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: भारत ने इसे तकनीक की आजमाइश करने वाले कई दीगर मुल्कों पीछे छोड़ते हुए मशहूरा प्रोजेक्ट के जरिए एक नया आलमी पैमाना तय किया है। जर्मनी और चीन जैसे मुल्कों में चलने वाली हाइड्रोजन ट्रेनों में आमतौर पर 2 या 3 रेल डिब्बे ही होते हैं, जबकि भारत ने 10 रेल डिब्बों वाली हाइड्रोजन रेलगाड़ी तैयार की है। इसका डिजाइन इस तरह बनाया गया है कि इसमें तकरीबन 2600 मुसाफिर सफर कर सकते हैं, जो आलमी सतह पर दीगर हाइड्रोजन ट्रेनों के मुकाबले सबसे ज्यादा गुंजाइश वाली रेलगाड़ी है। इस हाइड्रोजन ट्रेन में 3200 हॉर्स पावर का प्रोपल्शन निजाम नस्ब है। ये रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक पर मबनी है, जो रेलगाड़ी को चलाने के लिए हाइड्रोजन को बिजली में तब्दील कर देती है। जीन से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी चीन से चंडीगढ़ जाएंगे, जहां वो दोपहर 1:45 बजे के आसपास 4,700 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखेंगे और इफ्तिताह करेंगे। जनाब मोदी इस मौके पर एक जलसे से खिताब भी करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दोपहर पंजाब के जालंधर का दौरा करेंगे, जहां वो 5,470 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के रेल और सड़क बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। इन प्रोजेक्टों का मकसद कनेक्टिविटी को मुस्तहकम करना, मुसाफिरों की सहूलत में इजाफा करना और खित्ते में इकतसादी तरक्की को रफ्तार देना है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: वज़ीर आज़म ज़ाती तौर पर जालंधर कैंट स्टेशन का इफ्तिताह करने के बाद 20 रियासतों के नए सिरे से तामीर किए गए 74 रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल वसीले से इफ्तिताह करेंगे। इन स्टेशनों को दुनिया के सबसे बड़े तामीर नौ प्रोग्राम अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत नए सिरे से तैयार किया गया है। वज़ीर आज़म जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन से संत रविदास एक्सप्रेस ट्रेन को भी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यह हफ्ते में 3 दिन चलने वाली पहली बराह रास्त एसी ट्रेन होगी, जो भारत के दो अहम तरीन रूहानी और सकाफती मकामात अमृतसर और वाराणसी को मरबूत करेगी। वज़ीर आज़म 30.9 किलोमीटर तवील 4 लेन वाले दिल्ली अमृतसर कटरा ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे समेत कौमी शाहराहों के प्रोजेक्टों का भी इफ्तिताह करेंगे। जालंधर से राजेश बाली की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के लोगों से मिलने, नीज, रेलवेज, हिफ्जान सेहत, सकाफत, कनेक्टिविटी, तालीम और दीगर शोबों से वाबस्ता मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शामिल होने के मुंतजिर हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि इन सभी प्रोजेक्टों से लोगों की जिंदगी, खासतौर पर मुल्क की युवा शक्ति पर बहुत मुस्बत असर पड़ेगा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज से मगरबी बंगाल के 3 रोज़ा दौरे पर रहेंगे। जराए ने कहा है कि अपने दौरे के दौरान वो सरहदी सिक्योरिटी, हुक्मरानी, अमनो कानून और तरक्की पर मरकूज प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। कल जनाब शाह 18वीं बटालियन सरहदी अगली चौकी पर बीएसएफ के एहलकारों से बातचीत करेंगे। वो बीएसएफ से वाबस्ता मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। दोपहर में वो मगरबी बंगाल में सरहद से मुतालिक मामलात पर एक मीटिंग की सदारत करेंगे। जराए ने मजीद कहा है कि वजीर दाखिला रियासत में 3 नए फौजदारी कवानीन के निफाज का भी जायजा लेंगे। दिल्ली हुकूमत ने 400 करोड़ रुपए से ज्यादा के फंड्स के साथ स्टार्टअप और इंक्यूबेशन पॉलिसी को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत 5 बरस तक इख्तिरा और खुद रोजगार के लिए रकम इस्तेमाल की जाएगी। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने कहा कि ये पॉलिसी 11 रियासती यूनिवर्सिटियों, 13 हुकूमत के इमदाद याफ्ता कॉलेजों, ITI और हुकूमत के पॉलिटेक्निक इदारों का इहाता करेगी। दिल्ली हुकूमत के स्कूलों के तलबा इन इदारों में पॉलिसी के फवायद हासिल कर सकते हैं। दिल्ली की वजीर आला के दफ्तर ने एक बयान में कहा है कि कामयाब तलबा को माली मदद फराहम की जाएगी। रियासती इंक्यूबेशन पॉलिसी निगरानी कमेटी पर मबनी एक पैनल तश्कील दिया जाएगा, जो पॉलिसी के निफाज पर नजर रखेगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी से बात की और उनके वालिद अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के इंतकाल पर अपनी ताज़ियत का इजहार किया।

सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि अमीर कतर के वालिद की मीरास एक ऐसे वक्त में जबकि वो अपनी कलीदी शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम कर रहे हैं दोनों मुमालिक की रहनुमाई जारी रखेगी। उन्होंने भारत के लिए उनकी गहरी उनसियत, कतर में भारतीय बिरादरी के लिए गर्मजोशी और भारत कतर ताल्लुकात के लिए उनके अज़्म को याद किया। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। इम्तिहानात के इनेकाद से मुतालिक एजेंसी ने नीट यूजी 2026 के दोबारा कराए गए इम्तिहान के नतीजों का ऐलान कर दिया है। 11 लाख से ज़्यादा उम्मीदवारों ने अंडर ग्रेजुएट मेडिकल, डेंटल, आयुष और मुतालिका प्रोग्रामों में दाखिले के लिए क्वालिफाई किया है। सभी उम्मीदवारों के स्कोर कार्ड एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर दस्तियाब हैं। एनटीए ने कहा है कि नतीजों का ऐलान बरवक्त कर दिया गया है ताकि मेडिकल दाखिले और काउंसलिंग के प्रोग्राम मुतासिर ना हों। भारत में 551 शहरों और बैरून मुल्क 14 शहरों में 5,440 मराकज पर कराए गए दोबारा इम्तिहान में मजमूई तौर पर तकरीबन 20 लाख उम्मीदवार बैठे थे। गुजरात के दहशतगर्दी मुखालिफ दस्ते एटीएस ने पाकिस्तान में कायम जैश ए मोहम्मद तंजीम के दहशतगर्द गिरोह की अपनी तहकीकात के सिलसिले में पाटन ज़िले से 5 अफराद को गिरफ्तार किया है। इनके नाम बिलाल आबिद भाई शेरा, मोहम्मद अयूब कड़ीवाला, मोहम्मद पालनपुरी उर्फ खलील अयूब सुनसारा, शफिया रईस मुख्ती और मोहम्मद हसन कर दिया बताए गए हैं। इन अफराद को पाटन ज़िले के सिद्धपुर तालुका में खडियाल गांव से पकड़ा गया। इस महीने के शुरू में जैश ए मोहम्मद के 8 मुबैना कारिंदों से पूछताछ के दौरान इन 5 मुलजिमों के नाम सामने आए थे। इन 5ों को महसियाना ज़िले में जुडिशल मैजिस्ट्रेट आरएम भाटिया के सामने पेश किया गया और 24 जुलाई तक एटीएस की तहवील में भेज दिया गया। सरकारी वकील पीआर दंतानी ने अदालत को बताया कि इनमें से एक मुलजिम ने टाइम बम बनाने की कोशिश की थी और बम बनाने के काम आने वाला सामान और जैश ए मोहम्मद का लिटरेचर अभी बरामद नहीं किया गया है, इसीलिए हिरासत में लेकर मुलजिमों से पूछताछ करने की ज़रूरत है। गोवा हुकूमत ने कसिनो से मुतालिक जाब्तों में सख्ती करते हुए 21 बरस से कम उम्र के लोगों की कसिनो में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। महकमा दाखिला ने इस नई पाबंदी के नफाज के सिलसिले में एक नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन में साहिल के नज़दीक कसिनो के जहाज़ों के लिए लाइसेंस की अदायगी के सिलसिले में भी जाब्ते सख्त कर दिए गए हैं। नौजवानों की उमूर और खेलों की वजारत का नौजवानों के उमूर का महकमा आज से माई भारत नेशनल यूथ वॉलंटियर कन्वेंशन का इनेकाद करेगा, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में इस माह की 18 और 19 तारीख को 2 रोज़ा चिंतन शिविर होगा। वजारत ने कहा है कि एक के बाद एक 2 प्रोग्रामों का मकसद ज़मीनी सतह पर नौजवानों के राबतों को मुस्तहकम करना, इदारा जाति तालमेल को बढ़ाना और नौजवानों की क़्यादत में मुल्क की तामीर के लिए मुस्तकबिल के लिए तैयार एक ईको निज़ाम तश्कील देना है। दोनों तकारीब में नौजवानों के उमूर और खेलों के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया और नौजवानों के उमूर और खेलों की वजीर मुमलिकत रक्षा नितिन खड़से दीगर सीनियर अहदेदारान के साथ शिरकत करेंगे। अमरीकी फोर्सेस ने ईरान के साथ अमन समझौता नाकाम हो जाने के तनाजुर में ईरान के खिलाफ लगातार 6ठी रात फौजी हमले किए। अमरीका की मरकजी कमान के मुताबिक इन हमलों का मकसद ईरान की फौजी सलाहियत को मजीद कमज़ोर करना है, क्योंकि ईरान से आबनाए हुरमुज से गुजरने वाले कमर्शल बहरी जहाज़ों को ख़तरा लाहिक है। उधर ईरान के सरकारी मीडिया ने बताया है कि ईरान में अमरीका के हालिया हमलों में सिविलियन बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया है और इन हमलों में 3 अफराद हलाक और कई जख्मी हुए हैं। केरलम में मलयालम दौर के कार्किडाकम महीने को रामायण महीने के तौर पर मनाया जाता है, जिसका आगाज आज से हो रहा है। इस मौके पर अकीदतमंद रूहानी कुव्वत और जहनी सुकून के लिए रामायण की तरफ मुतवज्जे होते हैं। कार्किडाकम का आज पहला दिन है और इसके साथ ही पूरी रियासत में कई घरों और मंदिरों में रामायण का पाठ रोजाना का मामूल बन जाता है। जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अरकान और आला ओहदेदारान के साथ आला सतह की मीटिंग की सदारत की और पवित्र श्री माता वैष्णो देवी जी मंदिर में चढ़ावे और अतियात वगैरह के बंदोबस्त के निज़ाम का जायज़ा लिया।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से 2026 का विशेष यात्रा प्रसारण, जो FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, OTT प्लेटफॉर्म वेव्स, न्यूज़ ऑन एयर ऐप के आराधना चैनल तथा DTH के माध्यम से प्रसारित किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ गांधरबल से हमारे संवाददाता रिजवान जुड़ चुके हैं। रिजवान साहब से जानना चाहेंगे, रिजवान लेटेस्ट अपडेट बताइए यात्रा के हवाले से, क्या है इस वक्त
1: यात्रा के हवाले से। पहले हम अपने श्रोताओं को यहाँ के वातावरण के बारे में जानकारी साझा करते हैं। तो बालतल के पूरे क्षेत्र में आज मौसम बेहद खुशनुमा बना हुआ है। आकाश पर बादल छाए हुए एवं ठंडी हवाओं के बीच श्रद्धालु उत्साह तथा आस्था के साथ पवित्र गुफा की ओर लगातार प्रस्थान कर रहे हैं। सुहावने मौसम का आनंद लेते हुए श्रद्धालुओं के चेहरों पर उत्साह और श्रद्धा साफ दिखाई दे रही है। प्रशासन की ओर से यात्रा को सुचारू व्यवस्थित एवं बिना किसी बाधा के और सुरक्षित रूप से संचालित किया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार बालतल मार्ग पर अंशिक बादल और कहीं कहीं बहुत हल्की वर्षा की संभावना बनी हुई है। हालांकि फिलहाल यात्रा सामान्य रूप से जारी है। इस बीच आज सुबह 4 बजे से 7:30 बजे तक 6,457 श्रद्धालु बालतल बेस कैंप से पवित्र गुफा की ओर रवाना हुए। जय बाबा बर्फानी बम बम बोले तथा हर हर महादेव का पवित्र नाद करते हुए पवित्र गुफा जाने वाले श्रद्धालु में 4,713 पुरुष, 1,471 महिलाएं, 101 बालक बालिका, 34 साधु, 15 साधिया, 6 ट्रांसजेंडर एवं 117 सुरक्षा कर्मी शामिल हैं। इस वर्ष आए रोज देश के विभिन्न भागों से बड़ी मात्रा में श्रद्धालु घाटी आगमन होकर पवित्र गुफा की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। गुफा जाकर माथा टेकते हैं, पूजा पाठ करके देश एवं घाटी की अमन शांति तथा विकास के लिए प्रार्थना करते हैं और उन्हें शिवलिंगम के दर्शन से मन को शांति प्राप्त होती है, जिसे श्रद्धालु संतोष व्यक्त कर रहे हैं। इधर सरकारी आंकड़ों के अनुसार बीती रात 8 बजे तक 17,484 श्रद्धालु शिवलिंगम का दर्शन करके वापस सुरक्षित बालतल बेस कैंप पहुंचे। देर रात गए तक धीरे धीरे बालतल वापस पहुंचने वाले इन यात्रियों में 12,866 पुरुष, 4,205 महिलाएं, 171 बालक बालिका, 74 साधु, 6 साधिया, 3 ट्रांसजेंडर एवं 159 सुरक्षा कर्मी थे। शिवलिंगम के दर्शन से प्राप्त हुए श्रद्धालु ने इस वर्ष प्रशासन के द्वारा किए गए व्यवस्थाओं के बारे में आकाशवाणी को बताया।

0: प्रशासन ने यात्रा रूट के हर पड़ाव पर यात्रा रूट एवं पर्वतों के बीच कठिन मकामात जिनमें ब्राजी मार्ग, पंचतरणी, काली मथा, संगम टाप, रेल पथरी तथा लवर केव शामिल हैं पर यात्रियों की सहायता के लिए उच्च स्तर की सुविधाएं उपलब्ध रखी हैं, जबकि यात्रा के दौरान सुरक्षा के भी कड़े प्रबंध किए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को तीर्थ यात्रा के दौरान किसी प्रकार कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। इस दौरान यात्री बालतल क्षेत्र का वातावरण देखकर प्रसन्न होते हैं क्योंकि ये तीर्थ यात्रा करने वाले एक धर्म के लोग होते हैं, तो यात्रा करवाने वाले यानी यात्रियों को पवित्र गुफा तक सुरक्षित पहुंचाने वाले दूसरे धर्मों के लोग हैं। इस तरह
1: स्थानीय लोग जी जी जी
0: जी जी जी इस तरह यहाँ के वातावरण, यहाँ के भाईचारे, उखवत और मेहमान नवाजी को देखकर वो काफी प्रसन्न होते हैं और आशा करते हैं कि उनकी ये सुखद यात्रा संपूर्ण तरीके पर सफल हो सके।
1: तो इसका मतलब है कि हमारे जो यात्री हैं सब अभी प्रसन्नता से अपनी यात्रा जो है उस मार्ग पे बने हैं।
0: बिल्कुल, यात्रा संपूर्ण तरीके से जारी है और वो प्रसन्न है। खासकर अगर व्यवस्थाओं के बारे में हम बात करेंगे तो बार बार वो ये कहते हैं कि इस वर्ष अगर बड़ी मात्रा में देश के विभिन्न भागों से यात्री यहाँ दर्शन के लिए पहुंचे हैं, लेकिन फिर भी जो जिला प्रशासन है उन्हें अच्छी तरीके से इस पूरी सिचुएशन को टैकल किया और यात्रियों के लिए जितनी भी सुविधाएं हैं वो उपलब्ध रखी हैं, जिसको लेकर यात्री संतुष्ट है।
1: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद रिजवान साहब, गांधरबल से विस्तार पूर्वक जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए धन्यवाद।
0: धन्यवाद
1: जी। आप समाप्त कर रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण, और इस विशेष प्रसारण को आप आकाशवाणी के एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज, OTT प्लेटफॉर्म वेव्स, न्यूज ऑन एयर की आराधना चैनल तथा DTH के माध्यम से भी सुन रहे हैं। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि वो हर क्षण आपकी सुरक्षा करें और आपकी जो यात्रा है मंगलमय, सुखद और सफल रहे।

श्रोतो, आप श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण सुन रहे हैं और इस विशेष प्रसारण को आप आकाशवाणी के FM बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, पहलगाम FM पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, OTT प्लेटफॉर्म वेव्स, न्यूज़ ऑन एयर के आराधना चैनल तथा DTH के माध्यम से भी समाप्त कर रहे हैं।

श्रोता, आपको बता दें कि इस यात्रा के दौरान अपनी सेहत का खास ख्याल रखें, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना, आपके पास आपका जो RFID कार्ड होना अनिवार्य है। बिना RFID कार्ड और वैलिड परमिट के एक्सेस गेट से आगे जाने की अनुमति नहीं होगी, इसलिए इसे हमेशा आप अपने साथ रखें। और हाँ, हमारी इस सुंदर वादी को स्वच्छ रखना भी हमारा उत्तरदायित्व है। प्लास्टिक का उपयोग बिल्कुल भी ना करें।

0: हमारे इस विशेष प्रसारण के दौरान हम आप तक श्री अमरनाथ जी यात्रा से संबंधित हर महत्वपूर्ण और प्रमाणित जानकारी पहुंचाएंगे। ये यात्रा मार्ग की वर्तमान स्थिति, मौसम के हाल के साथ साथ प्रशासन द्वारा जारी ताज़ा सूचनाओं से भी आपको हम लगातार अवगत करते रहेंगे। हमारे संवाददाता भी इस दौरान शनशन की ताज़ा जानकारी लेकर आपके साथ जुड़ते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्रीनगर से इमरान नाइको। इमरान, आपका प्रोग्राम में स्वागत।
1: जी

0: जी
1: बताएं क्या अपडेट्स हैं आपके पास अमरनाथ जी यात्रा के हवाले से।
0: जी थैंक यू सो मच। जैसे कि अपडेट, हम मुसलसल श्रीनगर के इस पांथा चौक ट्रांजिट कैंप से कर रहे हैं और आज भी अमरनाथ जी यात्रियों के दो अलग अलग जत्थे पवित्र गुफा के दर्शन के लिए रवाना किए गए हैं। और कॉन्वॉय के बीच में अमरनाथ जी यात्रियों के इस जत्थे में मेल, फीमेल, साधु साध्वीज भी शामिल थी और कुछ इसमें बच्चे भी शामिल थे। ओवरऑल हम देख रहे हैं कि यहाँ श्रीनगर के इस पांथा चौक ट्रांजिट कैंप में अमरनाथ जी यात्रियों की जो आमद है, यानी उनका जो अराइवल है, और फिर यहाँ से इनको दोनों रूट्स की तरफ पवित्र गुफा के दर्शन करने का जो सिलसिला है वो बहुत दस्तूर जारी है। और कल भी यहाँ दो जत्थे पहुंचे थे और इनमें जिन्होंने पूरी रात यहाँ पे नाइट स्टे किया एज यूजुअल, जैसे कि पहले दिन से हम देख रहे हैं कि अमरनाथ जी यात्री श्रीनगर के अहम पांथा चौक ट्रांजिट कैंप पे पहुंच रहे हैं इस यात्रा ट्रांजिट कैंप पर। और यहाँ नाइट स्टे के बाद सुबह उन्हें रवाना किया जाता है अमरनाथ जी के गुफा के दर्शन के लिए।
1: जी
0: और इस सिलसिले में हम देख रहे हैं कि कल जो यात्री यहाँ पहुंचे थे और वो आज दर्शन के लिए रवाना किए गए हैं। और इस ट्रांजिट कैंप का जहां तक ताल्लुक है, जैसे कि हम मुसलसल इस बारे में अपडेट कर रहे हैं कि अमरनाथ जी यात्रियों के लिए यहाँ हर तरह की सुविधाएं, हर तरह की जो फैसिलिटीज है गवर्नमेंट की तरफ से रखी गई है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन हो, या फिर श्राइन बोर्ड की तरफ से हो, और साथ साथ खाने पीने को लेके लंगर्स, या फिर यहाँ जो सैनिटेशन का निजाम है, या बाकी जितनी भी बेसिक फैसिलिटीज है वो यहाँ अमरनाथ जी यात्रियों के लिए रखी गई है। और साथ साथ सिक्योरिटी भी यहाँ, जैसे कि हम कह रहे हैं कि वो गवर्नमेंट की तरफ से यात्रा से कबल ही इंश्योर की गई थी, और इस यात्रा के दौरान भी पुलिस, आर्मी या बाकी सीआरपीएफ या बाकी सिक्योरिटी जो इदारे हैं वो अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। और इस ट्रांजिट कैंप में हम मुसलसल अमरनाथ जी यात्रियों के साथ बात भी कर रहे हैं और फीडबैक भी हासिल कर रहे हैं, खासकर यात्रा को लेके। अभी तक वो यात्री जो पहली बार यहाँ पे आ रहे हैं, या वो यात्री जिन्होंने इससे पहले भी अमरनाथ जी के गुफा का दर्शन किया है, और ओवरऑल न सिर्फ कश्मीर में उनका एक्सपीरियंस, उनका फीडबैक, खासकर जो श्रीनगर के ट्रांजिट कैंप में पहुंचते हैं, तो एज ऑफ नाउ हम देख रहे हैं कि हर अमरनाथ जी यात्री का एक पॉजिटिव फीडबैक है, एक अच्छा फीडबैक है यहाँ की अरेंजमेंट्स को लेके, यहाँ की बाकी जितनी भी सुविधाएं रखी गई है, खासकर या जो यात्री हम देख रहे हैं कि दर्शन करके वापस आ रहे हैं, तो उनका मानना है कि बीआरओ की तरफ से ट्रैक्स को बहुत बेहतर किया गया है, या जो लाइट्स लगाई गई है, या जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट या सैनिटेशन की तरफ से जो सैनिटेशन का निजाम बनाया गया है
1: जी
0: रास्तों पर, या बाकी जितनी भी बेसिक फैसिलिटीज है, या सिक्योरिटी फोर्सेस उनके साथ जो है ताउन पेश कर रहे, तो सबके लिए हम देख रहे हैं कि अमरनाथ जी यात्रियों का एक अच्छा फीडबैक आ रहा है, जो कि इस पर खुशी का इजहार भी कर रहे हैं, अरेंजमेंट्स को लेके भी, सिक्योरिटी को लेके भी, और यहाँ जो वॉलंटियर्स है, यहाँ जो सर्विस प्रोवाइडर्स है उनकी सर्विसेज को लेकर भी।
1: जी इसका मतलब है कि जो हमारे स्थानीय लोग हैं वो भी बराबर इसमें शरीक है और बराबर अपना जो उत्तरदायित्व है वो अच्छे से निभा रहे हैं।
0: जी बिल्कुल, जैसे कि हम देख रहे हैं कि वो चाहे श्रीनगर हो, या अगर आप देखेंगे कि नंदवान बेस कैंप हो या पहलगाम बेस को, जहां जहां पे भी आप देखेंगे तो हर जगह आप देखेंगे कि यात्री जो है एक अच्छा फीडबैक दे रहे हैं, ना सिर्फ यात्रा में जो एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है, बल्कि जब लोकल्स यहाँ पे है, वॉलंटियर्स यहाँ पे है, सर्विस प्रोवाइडर्स यहाँ पे है जो इस यात्रा का एक हिस्सा है, तो हर एक को लेके यात्रियों का ये मानना है कि एक उनकी तरफ से हर तरह का उनको सपोर्ट, असिस्टेंस मिल रही है। और यही अच्छी और खूबी इस यात्रा की है कि इसमें कोई जो है, जो जिस जात से ताल्लुक रखता है वो अपनी जगह पे है, लेकिन यात्रा को लेके हर एक एक आवाज बन के इस यात्रा को बेहतर और सफल बनाने में अपना योगदान पेश कर रहे हैं।
1: जी इमरान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप ताज़ा तरीन अपडेट्स देने के लिए। थैंक यू सो मच। श्रोता, इस विशेष प्रसारण के द्वारा हम आप तक श्री अमरनाथ जी यात्रा से संबंधित हर महत्वपूर्ण और प्रमाणित जानकारी पहुंचाएंगे, पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ इस विशेष प्रसारण में।

0: श्रोता, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का, आकाशवाणी से 2026 का ये विशेष यात्रा प्रसारण, जो FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, OTT प्लेटफॉर्म वेव्स, न्यूज ऑन एयर ऐप की आराधना चैनल तथा DTH के माध्यम से प्रसारित किया जा रहा है। इस विशेष प्रसारण के दौरान हम आप तक श्री अमरनाथ जी यात्रा से जुड़ी हर महत्वपूर्ण और प्रमाण जानकारी पहुंचाएंगे। यात्रा मार्ग के वर्तमान स्थिति, मौसम की जानकारी और साथ ही साथ प्रशासन द्वारा जारी ताज़ा सूचनाओं से भी आपको लगातार अवगत करते रहेंगे। बने रहिए हमारे इस विशेष प्रसारण के संग। श्री अमरनाथ जी की गुफा भगवान शिव के प्रमुख स्थानों में से एक मानी जाती है। यहाँ प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग बनता है, जिसे देखने के लिए लाखों श्रद्धालु हर साल यहाँ आते हैं। यात्रा के लिए मुख्य रूप से दो मार्ग हैं, पहलगाम का मार्ग और बालतल का मार्ग। बालतल के मार्ग की बात करें तो ये छोटा है, लेकिन चढ़ाई काफी तेज है। बाबा बर्फानी की ये यात्रा एक तपस्या है। हर कदम पर भक्ति और विश्वास के साथ हजारों श्रद्धालु अपने मनोकामना और अपनी इच्छाएं लेकर पवित्र गुफा की ओर बढ़ रहे हैं। हम सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध करते हैं कि प्रशासन द्वारा जारी किए गए सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन करें और यात्रा के दौरान मौसम की जानकारी पर नज़र बनाए रखें। यात्रा के मार्ग पर लगे लंगर और मेडिकल कैंप्स सेवादारों की निष्काम सेवा का प्रतीक है, जो थके हुए यात्रियों में नई ऊर्जा भर देते हैं। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आपकी ये यात्रा सुखद, सफल और मंगलमय रहे।
1: पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
2: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
1: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ रखें। जय बाबा बर्फानी। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
2: आपको अकेले ट्रैक नहीं करना चाहिए, हमेशा एक समूह में यात्रा करें और सुनिश्चित करें कि समूह में शामिल सभी लोग आपके सामने या पीछे चल रहे हैं, हमेशा आपकी दृष्टि में रहें। ये सुनिश्चित करने के लिए

0: उनसे अलग ना हो।
1: किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाए, इसके लिए आपको अपने समूह के किसी सदस्य जिसके साथ आप यात्रा कर रहे हैं का नाम, पता और मोबाइल टेलीफोन नंबर का एक नोट अपनी जेब में जरूर रखें। साथ ही अपना यात्रा परमिट या कोई और पहचान पत्र भी अपने साथ रखें। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
0: उन स्थानों पर ना रुकें जो चेतावनी नोटिस द्वारा चिन्हित हैं। चप्पल का उपयोग ना करें क्योंकि पवित्र गुफा के मार्ग पर खड़ी चढ़ाई है। केवल फीते वाले ट्रैकिंग शूज ही पहने। रास्ते में शॉर्टकट का प्रयास ना करें क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है।
1: अपनी पूरी यात्रा के दौरान ऐसा कुछ भी ना करें जिससे यात्रा क्षेत्र में प्रदूषण हो या पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में प्लास्टिक के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध है और ये कानून के तहत दंडनीय है। वेस्ट मटेरियल को नजदीक के कूड़ेदान में ही फेंकें। सभी प्रकार के जैविक कचरे को हरे रंग के कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
0: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिएं।
1: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्ट पेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्रीपेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करेगा। जय जय बाबा।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
0: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
0: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ रखें।
2: श्रोताओं, आप श्री अमरनाथ जी यात्रा का विशेष प्रसारण सुन रहे हैं और इस विशेष प्रसारण को आप FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, OTT प्लेटफॉर्म वेव्स, न्यूज़ ऑन एयर ऐप के आराधना चैनल तथा DTH के माध्यम से भी सुन रहे हैं। यहाँ श्री अमरनाथ जी यात्रा की जो पवित्र और उसके आध्यात्मिक अनुभव को दर्शाते हुए हम आपसे कुछ बातें साझा करना चाहेंगे। अमरनाथ की यात्रा सिर्फ पहाड़ों की चढ़ाई नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी यात्रा है जो इंसान को अपनी असलियत से जोड़ती है। बर्फानी बाबा के दर्शन की चाह में इंसान अपने अहम को पीछे छोड़कर पवित्र गुफा की तरफ बढ़ता है। बालतल और पहलगाम के जो खूबसूरत नज़ारे, बर्फ़ से ढकी पहाड़ियाँ और ठंडी हवाएं हैं, ये सब मिलकर ऐसा माहौल बनाती हैं जहाँ हर यात्री को भगवान शिव की उपस्थिति महसूस होती है।

श्रोताओ, आप श्री अमरनाथ जी यात्रा का विशेष प्रसारण समान कर रहे हैं। इस विशेष प्रसारण को आप FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, OTT प्लेटफॉर्म वेव्स, न्यूज ऑन ईयर ऐप की आराधना चैनल तथा DTH के माध्यम से भी सुन रहे हैं। इस प्रसारण के द्वारा हम आप तक श्री अमरनाथ जी यात्रा से संबंधित हर महत्वपूर्ण और प्रमाणित जानकारी पहुंचाएंगे। यात्रा मार्ग की वर्तमान स्थिति, मौसम के हाल के साथ साथ प्रशासन द्वारा जारी ताज़ा सूचनाओं से भी आपको हम लगातार अवगत कराते रहेंगे।

0: जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
0: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ रखें।
2: श्रोताओ, आज प्रातः 10 बजे तक 6,365 तीर्थ यात्रियों ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त किए, जिनमें पुरुषों की संख्या 4,090, महिलाएं 2,120, बालक 74, साधु 16, साध्वी 2 और सुरक्षा कर्मचारी 54 शामिल हैं। और इस तरह से कुल मिलाकर आज प्रातः 10 बजे तक 6,356 तीर्थ यात्रियों ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त किए।
0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: उन स्थानों पर ना रुकें जो चेतावनी नोटिस द्वारा चिन्हित हैं। चप्पल का उपयोग ना करें क्योंकि पवित्र गुफा के मार्ग पर खड़ी चढ़ाई है। केवल फीते वाले ट्रैकिंग शूज ही पहनें। रास्ते में शॉर्टकट का प्रयास ना करें क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है।
0: अपनी पूरी यात्रा के दौरान ऐसा कुछ भी ना करें जिससे यात्रा क्षेत्र में प्रदूषण हो या पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में प्लास्टिक के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध है और ये कानून के तहत दंडनीय है। वेस्ट मटेरियल को नजदीक के कूड़ेदान में ही फेंकें। सभी प्रकार के जैविक कचरे को हरे रंग के कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें। विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिएं।
0: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्टपेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्रीपेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करेगा।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: आपको अकेले ट्रैक नहीं करना चाहिए, हमेशा एक समूह में यात्रा करें और सुनिश्चित करें कि समूह में शामिल सभी लोग आपके सामने या पीछे चल रहे हैं, हमेशा आपकी दृष्टि में रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनसे अलग ना हों।
0: किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाए, इसके लिए आपको अपने समूह के किसी सदस्य जिसके साथ आप यात्रा कर रहे हैं का नाम, पता और मोबाइल टेलीफोन नंबर का एक नोट अपनी जेब में जरूर रखें। साथ ही अपना यात्रा परमिट या कोई और पहचान पत्र भी अपने साथ रखें।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
0: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए।

श्रोतो, आप श्री अमरनाथ जी यात्रा का विशेष प्रसारण अभी सुन रहे हैं। दर्शन के 14वें दिन यानी कि गुरुवार देश भर से आए 19,357 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में दर्शन और पूजा अर्चना की। इसके साथ ही 3 जुलाई से शुरू हुई 57 दिन की ये यात्रा के पिछले 14 दिनों में देश और विदेश से आए कुल 3,43,882 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा के दर्शन प्राप्त कर लिए हैं। बने रहिए हमारे साथ हमारे इस विशेष प्रसारण में और सुनते रहिए हमारा ये विशेष प्रसारण।

श्रोताओ, आज प्रातः जम्मू भगवती नगर के बेस कैंप से 4,640 तीर्थयात्रियों को 171 छोटे बड़े वाहनों में घाटी की ओर रवाना किया गया, जिनमें बालतल के मार्ग से 1,626 तीर्थयात्रियों को 66 छोटे बड़े वाहनों में रवाना किया गया, जिनमें पुरुषों की संख्या 1,045, महिलाओं की संख्या 503, बालकों की संख्या 5, साधुओं की संख्या 58 और साध्वियों की संख्या 15 है। और इसी तरह से पहलगाम के मार्ग से 3,014 तीर्थयात्रियों को 105 छोटे बड़े वाहनों में रवाना किया गया, जिनमें पुरुषों की संख्या 2,403, महिलाओं की संख्या 572, साधुओं की संख्या 31 और साध्वियों की संख्या 8 हैं। ये थी जानकारी भगवती नगर जम्मू से, जो भगवती नगर जम्मू के बेस कैंप से जो आज सुबह जत्था रवाना किया गया, उस बारे में। आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां हम देते रहेंगे इस विशेष प्रसारण में, और ये विशेष प्रसारण आप FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, OTT प्लेटफॉर्म वेव्स, न्यूज़ ऑन एयर ऐप की आराधना चैनल तथा DTH के माध्यम से समाप्त कर रहे हैं।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
0: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ रखें।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: आपको अकेले ट्रैक नहीं करना चाहिए, हमेशा एक समूह में यात्रा करें और सुनिश्चित करें कि समूह में शामिल सभी लोग आपके सामने या पीछे चल रहे हैं, हमेशा आपकी दृष्टि में रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनसे अलग ना हों।
0: किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाए, इसके लिए आपको अपने समूह के किसी सदस्य जिसके साथ आप यात्रा कर रहे हैं का नाम, पता और मोबाइल टेलीफोन नंबर का एक नोट अपनी जेब में जरूर रखें। साथ ही अपना यात्रा परमिट या कोई और पहचान पत्र भी अपने साथ रखें।

0: श्रोताओं, आप श्री अमरनाथ जी यात्रा का ये विशेष प्रसारण सुन रहे हैं। इस विशेष प्रसारण का आप FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, OTT प्लेटफॉर्म वेव्स, न्यूज़ ऑन एयर ऐप की आराधना चैनल तथा DTH के माध्यम से सुन रहे हैं। श्रोताओं, आज यात्रियों के 14वें जत्थे को बालतल बेस कैंप से जम्मू की ओर रवाना कर दिया गया, जिसमें कुल मिलाकर 4,058 तीर्थ यात्रियों को 112 छोटे बड़े वाहनों में रवाना कर दिया गया, जिनमें पुरुषों की संख्या 2,747, महिलाएं 1,193, बालक बालिकाएं 19, साधु 99, साध्वियां 10 शामिल हैं। बने रहिए हमारे इस विशेष प्रसारण के साथ और आनंद लीजिए इस विशेष प्रसारण का।
1: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
2: उन स्थानों पर ना रुकें जो चेतावनी नोटिस द्वारा चिन्हित हैं। चप्पल का उपयोग ना करें, क्योंकि पवित्र गुफा के मार्ग पर खड़ी चढ़ाई है। केवल फीते वाले ट्रैकिंग शूज ही पहनें। रास्ते में शॉर्टकट का प्रयास ना करें, क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है।
1: अपनी पूरी यात्रा के दौरान ऐसा कुछ भी ना करें जिससे यात्रा क्षेत्र में प्रदूषण हो या पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में प्लास्टिक के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध है और ये कानून के तहत दंडनीय है। वेस्ट मटेरियल को नजदीक के कूड़ेदान में ही फेंकें। सभी प्रकार के जैविक कचरे को हरे रंग के कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
2: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिएं।
1: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्टपेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्रीपेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करेगा। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
2: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
1: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: उन स्थानों पर ना रुकें जो चेतावनी नोटिस द्वारा चिन्हित हैं। चप्पल का उपयोग ना करें क्योंकि पवित्र गुफा के मार्ग पर खड़ी चढ़ाई है। केवल फीते वाले ट्रैकिंग शूज ही पहनें। रास्ते में शॉर्टकट का प्रयास ना करें क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है।
0: अब

श्रोताओ, आप श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण सुन रहे हैं और इस विशेष प्रसारण को आप आकाशवाणी के FM बालतल

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, ओटीटी पहलगाम प्लेटफॉर्म वेव्स, न्यूज़ ऑन एयर के आराधना चैनल तथा डीटीएच के माध्यम से भी सुन रहे हैं। तीर्थयात्रियों के दर्शन अपडेट्स आप तक हम पहुंचा रहे हैं। अभी जो हमें लेटेस्ट दर्शन अपडेट मिला है उसके अनुसार ठीक 11 बजे तक जो हमारे पास दर्शन अपडेट आया है उसके अनुसार ठीक 11 बजे तक 8,471 तीर्थ यात्रियों ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त किए हैं, जिनमें पुरुषों की संख्या 5,790, महिलाओं की संख्या 2,488, बालक 94, साधु 21 और सिक्योरिटी फोर्सेस 74 हैं। कुल मिलाकर इस तरह से 8,471 तीर्थयात्रियों ने 11 बजे तक बाबा भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त किए हैं। बने रहिए हमारे इस विशेष प्रसारण के साथ, एफएम भालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज, ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स, न्यूज़ ऑन एयर के आराधना चैनल तथा डीटीएच के माध्यम से भी आप हमें सुन पा रहे हैं। हमारे साथ बने रहिए इन माध्यम के साथ।

श्रोताओ, आप श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण सुन रहे हैं। अमरनाथ की यात्रा केवल एक भौगोलिक यात्रा नहीं, बल्कि आत्मा का परमात्मा से मिलन का एक मार्ग है। दुर्गम पहाड़ों, बर्फीली वादियों और कठिन रास्तों को पार करके जब भक्त बाबा बर्फानी के दर्शन करता है तो उसे एक अलौकिक शांति का अनुभव होता है। दर्शन और भक्ति के लिए भक्त का दिल में जो एक इरादा होता है वो होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम यात्रा के मुख्य पद्व और महत्व की बात करें तो पवन गुफा जो है, जहाँ भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी, यही स्थान मोक्ष का द्वार माना जाता है। हजारों श्रद्धालु हर साल अपनी अटूट श्रद्धा के साथ बम बम बोले के जयघोष करते हुए इस यात्रा को पूरा करते हैं। अमरनाथ का हिमलिंग प्राकृतिक रूप से बनता है और चंद्रमा के कलाओं के अनुसार घटता बढ़ता है, जो स्वयं में एक अद्भुत रहस्य है। सुनते रहिए हमारा ये विशेष प्रसारण, जो आप आकाशवाणी के एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज पर और एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, इसके अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स, न्यूज़ ऑन एआईआर की आराधना चैनल तथा डीटीएच के माध्यम से भी सुन रहे हैं।

यात्रियों, हम सब यही कामना करते हैं कि आप सेहतमंद रहें। आप सब भगवान शिव जी की शरण में हैं। आपकी यात्रा मंगलमय और सुखद हो, इसके लिए कृपया अनुशासन का पालन करें, सफाई रखें, प्लास्टिक की बोतलें, प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें और कचरा इधर उधर ना फेंकें। एक दूसरे की मदद करें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। बम बम भोले के जयकारों के साथ अपना कदम आगे बढ़ाएं। दर्शन के समय मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ना ही करें तो अच्छा है, और ना ही फोटोग्राफी करें ताकि धार्मिक वातावरण बना रहे। गुफा के अंदर दर्शन करते समय धक्का मुक्की ना करें, क्योंकि सबको दर्शन का अवसर मिलेगा, इसलिए धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। खाने पीने में ख्याल रखें ताकि आपकी सेहत ना बिगड़े, इसलिए जंक फूड, स्ट्रीट फूड्स, इन चीज़ों का बहुत कम इस्तेमाल करें। पानी खूब पिएं और हल्का फुल्का पौष्टिक आहार ज़रूर लें। बहुत ज़्यादा तले मसाले वाले खाने या कोई ऐसा खाना जो आपकी सेहत को सूट नहीं करता ना खाएं, ताकि आप सेहतमंद रहें और आपकी यात्रा जो है वो सफल रहे, मंगल कुशलता से संपूर्ण हो।

श्रोतो, आप श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण अपनी उद्घोषक तस्लीमा के साथ सुन रहे हैं और इस विशेष प्रसारण को आप आकाशवाणी के FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, OTT प्लेटफॉर्म वेव्स, न्यूज़ ऑन AIR की आराधना चैनल तथा DTH के माध्यम से भी सुन रहे हैं। यात्रा का ये सफ़र सिर्फ पहाड़ों का नहीं बल्कि स्वयं के भीतर उतरने का है। हर कदम पर अपने अहंकार को छोड़ते जाइए और श्रद्धा को भरते जाइए। जब आप ऊपर पहुँचेंगे, जितना जितना ऊपर पहाड़ियों पर चढ़ते जाएंगे, तो आप वही पुराने इंसान नहीं होंगे बल्कि एक शुद्ध मन के साथ लौटेंगे। इस कठिन रास्ते पर आपके साथ

साथी सिर्फ आपका शिवभक्त भाई है। अगर किसी को आपकी मदद की ज़रूरत हो तो बिना सोचे आगे बढ़ें। किसी की प्यास बुझाना या किसी को सहारा देना बाबा की सेवा करने के बराबर है। पहाड़ों का मौसम और रास्ते बदलते रहते हैं, कभी देरी हो सकती है, कभी इंतज़ार करना पड़ सकता है। इस समय में गुस्सा ना करें, क्रोध ना करें, बल्कि इसे बाबा के दर्शन से पहले की एक तपस्या समझ लें। शांति में ही शक्ति है। सिर्फ शरीर से यात्रा करना पर्याप्त नहीं है, मन को भी पवित्र रखें। किसी के बारे में बुरा ना सोचें, कटु शब्द ना बोलें। आपका हर बोल ओम नमः शिवाय की ध्वनि जैसा मधुर होना चाहिए।

श्री अमरनाथ जी यात्रा का ये विशेष प्रसारण अभी जारी है, आप सुन रहे हैं। आपसे कहना चाहेंगे कि अपने साथ उतना ही सामान लें जितना ज़रूरी हो, क्योंकि सफ़र के दौरान ज़्यादा सामान या ज़्यादा बोझ उठाना ठीक नहीं है। कोशिश करें कि इस यात्रा के दौरान आप अपने मन का बोझ, चिंता, दुख, पुरानी बातें सब कहीं दूर छोड़कर आए, बहुत पीछे। बाबा बर्फानी की इस पवित्र यात्रा में आपका जो समय है वो सफल रहे, और उसको सफल बनाने की कोशिश भी आपने खुद करनी है। याद रखें, ये रास्ता, ये मार्ग जितना कठिन है उतना ही पुण्यदायी है। कृपया अपने मन में शांति, वचन में नम्रता और व्यवहार में सेवा का भाव रखें। हर कदम पर शिव नाम का स्मरण करें, आपकी यात्रा मंगलमय हो। एक और ज़रूरी बात आपसे करना चाहेंगे, आपके पास आपका RFID कार्ड होना अनिवार्य है। बिना RFID कार्ड और वैलिड परमिट के एक्सेस गेट से आगे जाने की अनुमति आपको नहीं होगी, इसलिए इसे हमेशा अपने साथ रखें। और हाँ, हमारी सुंदर सी वादी को स्वच्छ रखना भी हमारा उत्तरदायित्व है। प्लास्टिक का उपयोग बिल्कुल भी ना करें।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति

0: नहीं दी जाएगी।
1: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ रखें। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
0: आपको अकेले ट्रैक नहीं करना चाहिए, हमेशा एक समूह में यात्रा करें और सुनिश्चित करें कि समूह में शामिल सभी लोग आपके सामने या पीछे चल रहे हैं, हमेशा आपकी दृष्टि में रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनसे अलग ना हों।
1: किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाए, इसके लिए आपको अपने समूह के किसी सदस्य जिसके साथ आप यात्रा कर रहे हैं का नाम, पता और मोबाइल टेलीफोन नंबर का एक नोट अपनी जेब में जरूर रखें। साथ ही अपना यात्रा परमिट या कोई और पहचान पत्र भी अपने साथ रखें।

0: श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
0: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ रखें।
2: आप श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण सुन रहे हैं। FM बालतल 103.7, FM पहलगाम 100.1 MHz, DTH और न्यूज ऑन एयर की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए। श्रोताओं, हमारी सुरक्षा एजेंसीज, भारतीय सेना और प्रशासन दिन रात हमारे यात्रियों की सेवा और सुरक्षा में मुस्तैद हैं। इस बार यात्रा मार्ग पर ड्रोन, सीसीटीवी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक से डिजिटल कवच

तैयार किया गया है, तो सुरक्षा को लेकर हमारे यात्री बिल्कुल निश्चिंत रहें। मौसम की बात करें तो पहाड़ों का मौसम पल पल बदलता है। पहलगाम और पंचतरनी के आसपास हल्की बूंदाबांदी देखी जा रही है, इसलिए तापमान में थोड़ी गिरावट आई है। जितने भी यात्री इस समय बाबा की ओर बढ़ रहे हैं, अपने साथ गर्म कपड़े और रेनकोट जरूर रखें।

FM बालतल, FM पहलगाम, DTH और न्यूज़ ऑन ईयर की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए आप श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण सुन रहे हैं। अब हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियोज, जहां से आप समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया। इस रेलगाड़ी का शुभारंभ रेलवे क्षेत्र में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पूरी तरह से स्वदेश में बनाई गई ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में भारत की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जींद में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस अवसर पर एक जनसभा में उन्होंने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत को देश के लिए बड़ी उपलब्धि बताया।
1: आज भारतीय रेल ने भी 21वीं सदी की इस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप लिया है। आज जींद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चली है। अभी ये सफर 90 किलोमीटर का है। हम इस पर रिसर्च करते रहेंगे, लागत कम कैसे हो इसका तरीका ढूंढते रहेंगे, एफिशिएंसी कैसे बढ़े इस पर काम करते रहेंगे और बड़ी जांच पड़ताल करते करते एक के बाद एक कदम उठाते जाएंगे।
0: जींद के बाद प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क व्यवस्था को मजबूत करना, यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाना और आर्थिक विकास को गति देना है। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देशभर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें केरलम के 6 रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। इन स्टेशनों के पुनर्विकास से राज्य में रेल बुनियादी ढांचे और यात्री सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। गृहमंत्री अमित शाह आज रात 3 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। श्री शाह कल राज्य के जुमागाछ के सीमा चौक स्थित सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की 18वीं बटालियन का दौरा करेंगे, जहां वे प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे, वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे तथा कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री शाह का बीएसएफ कर्मियों से बातचीत का भी कार्यक्रम है। गृहमंत्री सिलीगुड़ी के उत्तर कन्या में कई उच्च स्तरीय बैठकें करेंगे। इन बैठकों में विभिन्न प्रशासनिक मामलों, पश्चिम बंगाल में नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन और जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। भारतीय पुलिस सेवा के 1994 बैच के वरिष्ठ अधिकारी अनुराग कुमार को दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार उनकी नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने के तथ्य से प्रभावी होगी और अगले आदेश तक लागू रहेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 जुलाई से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर जाएंगे। ये किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की पहली यात्रा होगी। विदेश मंत्रालय के अनुसार ये दौरा भारत के इन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और पूर्वी यूरोपीय क्षेत्र के साथ सहयोग को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय डीजीएमए ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक होर्मुस जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है। महानिदेशालय ने यह सलाह खाड़ी क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और हाल के दिनों में व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों को देखते हुए जारी की है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 1% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 790 अंक बढ़कर 77,977 जबकि निफ्टी 205 अंक की बढ़त के साथ 24,277 पर कारोबार कर रहा था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी का परिणाम घोषित कर दिया है। 11 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी मेडिकल, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। सभी उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उपलब्ध हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: 7. And with that, we end this news bulletin.
1: आप श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण सुन रहे हैं। अगर आप बालतल के छोटे मार्ग से दर्शन के लिए जा रहे हैं, आप हमें सुन सकते हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। अगर आप पहलगाम के प्राचीन मार्ग से दर्शन के लिए जा रहे हैं, आप हमें सुन

0: श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
0: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ

आप श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण सुन रहे हैं। FM बालतल, FM पहलगाम, DTH और न्यूज ऑन एयर की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए। लेटेस्ट अपडेट के अनुसार दोपहर 12 बजे तक कुल 10,169 यात्रियों ने बाबा बर्फानी के दर्शन प्राप्त कर लिए हैं, जिनमें पुरुषों की संख्या है 6,929, महिलाओं की संख्या है 2,991, बालकों की संख्या है 121, 29 साधु, 6 साध्वी, 7 ट्रांसजेंडर और 86 सुरक्षा कर्मी। जी हाँ, टोटल की अगर

बात करें हम, कुल 10,169 श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन प्राप्त कर लिए हैं आज 12 बजे तक। यहाँ पर एक और जानकारी आप तक पहुँचाना चाहेंगे। प्रशासन ने साफ कहा है कि केवल वही श्रद्धालु यात्रा मार्ग पर आगे बढ़ें जिनके पास कन्फर्म डेट का यात्रा परमिट है। बिना रजिस्ट्रेशन वाले यात्री जल्दबाजी ना करें और अपनी तय तारीख का ही इंतज़ार करें। और हाँ, अपना RFID कार्ड जो है वो अपने गले में हमेशा पहनकर रखें। इसके बिना आपको डोमेल या चंदनवारी के एक्सेस गेट से आगे जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। ये कार्ड आपकी सुरक्षा और ट्रैकिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।

0: पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
0: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम एक महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए।

एफएम बालतल, एफएम पहलगाम, डीटीएच और न्यूज ऑन एयर की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए आप श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण सुन रहे हैं। श्रोताओं, आपको बता दें कि बिना एडवांस रजिस्ट्रेशन के किसी भी यात्री को एक्सेस चेक पॉइंट्स यानी कि एंट्री गेट से आगे जाने की अनुमति नहीं मिलती। इसमें कुछ चीज़ें रखी गई हैं, जैसे कि उम्र की सीमा की अगर बात करें यानी कि एज लिमिट जो है वो 13 साल से 70 साल तक है, यानी कि 13 साल से 70 साल तक के लोग जो हैं वो इस यात्रा पर जा सकते हैं। 6 हफ्ते से ज़्यादा की प्रेग्नेंट महिलाओं को यात्रा पर जाने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। इसमें आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत रहती है। आप श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। देशभर के 550 बैंक ब्रांच जैसे कि PNB, SBI, JK बैंक और येस बैंक के जरिए ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। हर यात्री के पास किसी ऑथोराइज्ड सरकारी डॉक्टर द्वारा साइन किया हुआ हेल्थ सर्टिफिकेट होना लाजमी है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, इन चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर एक और भजन सुनते हैं, आप बने रहिएगा हमारे साथ एफएम बालतल, एफएम पहलगाम पर।

0: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल, एफएम पहलगाम, डीटीएच और न्यूज ऑन एयर की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए। जी हाँ दोस्तों, अब हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियोज, जहाँ से आप समाचार सुनेंगे।
1: ताकि भारतीय नाविका नु अगले नोटिस तक होर्मुज़ पणजोड़ विच लंघन वाले जहाजा ते तैनात ना कीता जावे। इस दे नाल ही साडा ए बुलेटिन खत्म हुंदा है। नमस्कार,
2: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं कौनैन हैदर। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के शहर जिंद में भारत की हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने 14,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत वाले मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखा और मुल्क के नाम वक्फ किया। DGMA ने बहरी जहाज़ों के मालिकान को हिदायत दी है कि वो खलीज खत्ते

0: में सलामती से मुतालिक सूरत हाल के दौरान भारतीय मल्लाहों को तैनात करने से गुरेज करें। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान में इंसानी हकूक की सूरत हाल पर गहरी तशवीश जाहिर की है। उसने पाकिस्तान से कहा है कि वो नए GSP फ्रेमवर्क के तहत बैनल अक्वामी अजाइम पर अमल दरामद करे। और बैडमिंटन में भारत की सरकर्दा खिलाड़ी PV सिंधु टोक्यो में जापान ओपन के सेमीफाइनल्स में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा में जिंद रेलवे स्टेशन पर जिंद और सोनीपत के दरमियान हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन का आगाज रेलवे के शोबे में साफ और पायदार नकलो हमल को अपनाने की जानिब एक अहम कदम है। इसे भारत में ही तैयार किया गया है। इस ट्रेन का आगाज रेलवे के शोबे में साफ सुथरी और पायदार नकलो हमल इख्तियार किए जाने की तरफ एक अहम कदम है। वजीर आजम ने इस मौके पर हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत वाले कौमी शाहराह प्रोजेक्टों को मुल्क के नाम वक्फ किया और संगे बुनियाद रखा। जनाब मोदी ने 157 किलोमीटर तवील दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे को भी मुल्क के नाम वक्फ किया। इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली और कटरा के दरमियान सफर के वक्त में खातिर ख्वाह कमी आ जाएगी। अभी तक ये सफर तकरीबन 14 घंटे में तय होता है, लेकिन इस ट्रेन के आगाज के बाद ये सफर महज तकरीबन 6 घंटे रह जाएगा, जबकि दिल्ली से अमृतसर का सफर महज 4 घंटे में पूरा हो जाएगा, जबकि अभी तक इस फासले को तय करने में 8 घंटे लगते हैं। इज्तिमा से खिताब करते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा कि पिछले 12 साल में भारतीय रेलवेज में बड़े पैमाने पर तब्दीली हुई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में हालिया बरसों के दौरान तरक्की का एक नया मरहला शुरू हुआ है। जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के आगाज से जिंद को भारत की तारीख में एक खुसूसी मकाम हासिल हुआ है।
1: भविष्य में जब भी हाइड्रोजन ट्रेन का जिक्र आएगा तो जिंद का, सोनीपत का, हरियाणा का नाम भी आएगा ही आएगा। मैं आप सभी को, पूरे देश को भारतीय रेल की आधुनिकता से जुड़े इस बड़े कदम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं।
0: वजीर आजम ने कहा कि आज जिंद बीजेपी और NDA की अच्छी हुक्मरानी की एक मिसाल बनकर उभरा है। इस मौके पर रेलवे के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के आगाज को मुल्क की टेक्नोलॉजी की तरक्की में एक तारीखी हुसूलिया भी करार दिया है।
2: आज प्रधानमंत्री जी 315 करोड़ से 11 गुना बढ़ाकर 3,500 करोड़ रुपए हरियाणा में रेलवे के विकास के लिए देते हैं। आज हरियाणा में 18,000 करोड़ रुपए का रेलवे का काम चल रहा है। 34 स्टेशनों का नव निर्माण हो रहा है और 5 स्टेशन का तो काम भी पूरा हो गया है, होडल, जिंद, कालका, मंडी डाबवाली और नरवाना। इसके अलावा हरियाणा में 16 वंदे भारत सर्विसेज और 8 अमृत भारत चल रही है। हरियाणा को 100% विद्युतीकरण कर दिया गया है।
0: ये ट्रेन भारत में ही तैयार की गई है, जिसमें मुल्क की ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिससे रेलवे इंजीनियरिंग की जिद्दत में मुल्क की बढ़ती हुई सलाहियतों का अंदाजा होता है। इस ट्रेन की रफ्तार जिंद सोनीपत सेक्शन पर 75 किलोमीटर फी घंटा है और ये अपने डिजाइन के मुताबिक 110 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल सकती है। ये ट्रेन न सिर्फ महफूज दर है बल्कि 89 किलोमीटर के इस सेक्शन पर यह सबसे तेज रफ्तार रेलगाड़ी है। तफसील हमारे नामा निगार से।
3: जर्मनी और चीन जैसे मुल्कों में चलने वाली हाइड्रोजन ट्रेनों में आमतौर पर 2 या 3 रेल डिब्बे होते हैं, जबकि भारत ने 10 रेल डिब्बों वाली यह हाइड्रोजन ट्रेन तैयार की है। इसका डिज़ाइन इस तरह तैयार किया गया है कि इसमें तकरीबन 2,600 मुसाफिर सफ़र कर सकते हैं, जो आलमी सतह पर दीगर हाइड्रोजन ट्रेनों के मुकाबले सबसे ज़्यादा गुंजाइश वाली रेलगाड़ी है। इस हाइड्रोजन ट्रेन में 3,200 हॉर्स पावर का प्रोपल्जन निज़ाम नस्ब है। ये रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक पर मबनी है, जो रेलगाड़ी को चलाने के लिए हाइड्रोजन को बिजली में तब्दील कर देती है। हाइड्रोजन ईंधन सेल टेक्नोलॉजी से चलने वाली ये ट्रेन हाइड्रोजन को बिजली में बदल देती है, जिससे ये ट्रेन आगे बढ़ती है। इस अमल के जरिए सिर्फ पानी के बुखारात ज़िमनी पैदावार के तौर पर बनते हैं, जिसके नतीजे में ट्रेन चलने के दौरान कार्बन हरगिज़ खारिज नहीं होती। ये ट्रेन कई सतहों के हिफाजती निज़ाम से लैस है, जिसमें हाइड्रोजन लीक, गरमाई, शोलों और धुएं का पता लग जाता है। जिंद से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। समंदरी इंतजामिया के डायरेक्टोरेट

0: जनरल डीजीएमए ने बहरी जहाज़ों के मालिकान, मैनेजर्स और भर्ती करने वाली सर्विस लाइसेंस कंपनियों को हिदायत दी है कि वो उन जहाज़ों पर भारतीय मल्लाहों को तैनात करने से गुरेज करें जो मजीद अहकाम जारी होने तक आबनाई हुरमुज से सफ़र कर रहे हैं। समंदरी इंतजामिया ने खलीज के खत्ते में सिक्योरिटी की संगीन होती हुई सूरत हाल के पेश नज़र भारतीय मल्लाहों की हिफाजत के लिए एहतियाती इकदाम की हिदायत दी है। डायरेक्टोरेट ने बताया कि पिछले कुछ दिन से मर्चेंट जहाज़ों पर हमलों के हालिया वाकयात की वजह से खास तौर पर तनाज़े से मुतासर इलाके में मल्लाहों और कमर्शल जहाज़ों को दरपेश खतरात में इजाफा हो गया है। हुकूमत पार्लियामेंट के आइंदा मानसून इजलास से कबल इतवार के रोज़ पार्लियामेंट में सियासी पार्टियों के रहनुमाओं के साथ एक मीटिंग करेगी। इस मीटिंग के दौरान हुकूमत तमाम सियासी पार्टियों से तआवुन तलब करेगी ताकि पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के कामकाज के खुशसलूबी से जारी रहने को यकीनी बनाया जा सके। पार्लियामेंट का मानसून इजलास 20 जुलाई से शुरू होगा और ये अगले महीने की 13 तारीख तक जारी रहेगा। इस इजलास के दौरान कई अहम कवानीन को बहस और मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। सदी जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू इस माह की 19 तारीख से मोल्दोवा, शिमाली मकदूनिया और रोमानिया के दौरे पर रहेंगी। 20 तारीख को सदर जमहूरिया मोल्दोवा जाएंगी और अपनी हममनसब माया संधु के साथ मुलाकात करेंगी और इसके बाद वो वफ्द की सतह की बातचीत करेंगी। मोहतरमा मुर्मू मोल्दोवा की पार्लियामेंट के सदर इगोर ग्रोसू से भी मिलेंगी और मोल्दोवा भारत पार्लियामानी फ्रेंडशिप ग्रुप के साथ बातचीत करेंगी। अपने दौरे के दूसरे मरहले में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू इस माह की 21 तारीख से शिमाली मकदूनिया का दौरा करेंगी। किसी भारतीय सदर जमहूरिया का शिमाली मकदूनिया का ये पहला दौरा होगा। अपने दौरे के आखिरी मरहले में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 23 तारीख से रोमानिया का दौरा करेंगी। अपने 2 रोज़ा दौरे के दौरान रोमानिया के सदर निकोसोर दान और रोमानिया के अबूरी वजीर आजम एली बोलोजान के साथ भी मीटिंग करेंगी। गुजरात के दहशतगर्दी की रोकथाम के दस्ते ने 5 अफराद को गिरफ्तार किया है। उन्हें पाकिस्तान की दहशतगर्द तंजीम जैश ए मोहम्मद के एक दहशतगर्द मॉड्यूल से मुतालिक जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। इन अफराद की शिनाख्त बिलाल आबिद भाई शेरा, मोहम्मद अयूब कदीवाला, मोहम्मद पालनपुर, शाफिया रईस मुफ्ती और मोहम्मद हसन काडिया के तौर पर हुई है। बरतानिया में मुकीम कश्मीरी बरादरी के लोगों ने बुध को बरतानिया के ब्रेडफोर्ड में पाकिस्तानी कौंसिल खाने के बाहर पाकिस्तान के खिलाफ मुजाहरे और एहतजाज किया। उन्होंने पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम लगाया। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान में इंसानी हकूक की सूरत हाल पर गहरी तशवीश जाहिर की है। उसने खबरदार किया है कि तरजीहात प्लस या GSP+ की आम की गई स्कीम के तहत तजारती फ़ायदों तक पाकिस्तान की लगातार रसाई 2027 से नजरसानी शुदा GSP फ्रेमवर्क के तहत बैन अलावामी वादों पर उसके अमल दरामद पर मुनहसर होगी। बैडमिंटन में ओलंपिक में 2 बार तमगा हासिल करने वाली पीवी सिंधु जापान ओपन 2026 के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। पीवी सिंधु खवातीन के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल से जापान की साबिक आलमी चैंपियन नोजोमी ओकोहारा मैच न खेलने के बाद सेमीफाइनल में पहुंची हैं। टोक्यो मेट्रोपॉलिटन जिम्नेजियम में खेल शुरू होने से पहले क्वार्टर फाइनल मैच रद्द कर दिया गया था। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के शहर जिंद में भारत की हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखा और मुल्क के नाम वक्फ किया। DGMA ने बहरी जहाज़ों के मालिकान को हिदायत दी है कि वो खलीज खत्ते में सलामती से मुतालिक सूरत हाल के दौरान भारतीय मल्लाहों को तैनात करने से गुरेज करें। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान में इंसानी हकूक की सूरत हाल पर गहरी तशवीश जाहिर की है। उसने पाकिस्तान से कहा है कि वो नए GSP फ्रेमवर्क के तहत बैन अलावामी अजाइम पर अमल दरामद करे। और बैडमिंटन में भारत की सरकर्दा खिलाड़ी पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: Good afternoon. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi flags off India's first hydrogen train in Jind, Haryana. Also lays foundation stone and dedicates various development projects worth over 14,000 crore rupees. DGMA directs ship owners to avoid deploying Indian seafarers undertaking voyages through Strait of Hormuz.

0: गांव की आधारशिला रखी। श्री मोदी ने 157 किलोमीटर लंबे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे को राष्ट्र को समर्पित किया। ये ग्रीनफील्ड कॉरिडोर 667 किलोमीटर लंबे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का हिस्सा है। इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली और कटरा के बीच यात्रा का समय 14 घंटे से घटकर लगभग 6 घंटे हो जाएगा, जबकि दिल्ली अमृतसर की यात्रा का समय लगभग 8 घंटे से घटकर 4 घंटे हो जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में भारतीय रेलवे में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा ने हाल के वर्षों में विकास के एक नए चरण को देखा है और प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ है।
1: 2 नए मेडिकल कॉलेज भी हरियाणा की सेवा के लिए समर्पित है। भिवानी में पंडित नेकीराम शर्मा मेडिकल कॉलेज और नारनौल में महर्षि च्यवन मेडिकल कॉलेज और राव तुलाराम अस्पताल, इससे हरियाणा की स्वास्थ्य सेवा और सशक्त होगी। साथ ही इस यहाँ के नौजवानों के लिए डॉक्टर और अन्य मेडिकल प्रोफेशनल्स बनने के नए रास्ते भी बनेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि जींद भाजपा और एनडीए के सुशासन मॉडल का प्रतीक बनकर उभर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के शुभारंभ ने जींद को भारत के इतिहास में एक विशेष स्थान दिलाया है।
1: आज भारतीय रेल ने भी 21वीं सदी की इस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप लिया है। आज जींद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चली है। अभी ये सफर 90 किलोमीटर का है। हम इस पर रिसर्च करते रहेंगे, लागत कम कैसे हो इसका तरीका ढूंढते रहेंगे, एफिशिएंसी कैसे बढ़े इस पर काम करते रहेंगे और बड़ी जांच पड़ताल करते करते एक के बाद एक कदम उठाते जाएंगे।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन के शुभारंभ को देश की तकनीकी प्रगति में एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। श्री वैष्णव ने कहा कि ये उपलब्धि नरेंद्र मोदी सरकार के व्यापक रेलवे आधुनिकीकरण अभियान का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि स्वदेशी हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी के विकास के लिए दृढ़ राष्ट्र संकल्प का परिणाम है।
2: जींद में हाइड्रोजन बनाने का प्लांट लगाया गया है। उस हाइड्रोजन से बिजली बनती है और उस बिजली से ट्रेन चलती है। कोई धुआं नहीं, कोई पेट्रोल या डीजल की रिक्वायरमेंट नहीं, एकदम साफ स्वच्छ और सिर्फ निकलता है पानी की बूंदे। मैं इस बड़ी उपलब्धि के लिए भारत के नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री जी को और भारत के इंजीनियर्स की टेक्निकल क्षमता को सल्यूट करता हूँ।
0: भारत में डिजाइन और एकीकृत की गई इस ट्रेन को स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके विकसित किया गया है। ये उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। जींद सोनीपत खंड पर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की परिचालन गति और 110 किलोमीटर प्रति घंटे की डिजाइन गति के साथ ही ट्रेन न केवल सुरक्षित है बल्कि 89 किलोमीटर के इस खंड पर तेज भी है। एक रिपोर्ट।
3: हाइड्रोजन से चलने वाली इस ट्रेन की शुरुआत होने के साथ ही भारत अब जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका जैसे उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जहां हाइड्रोजन ट्रेनें चल रही हैं। इस समय दुनिया में अभी ज्यादातर हाइड्रोजन ट्रेनें सिर्फ 2 या 3 डिब्बों की होती है और इन्हें छोटी दूरी की क्षेत्रीय मार्गों पर चलाया जाता है। इसके विपरीत भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन से चलने वाली इस 10 डिब्बों की ट्रेन तैयार की है जिसमें करीब 2600 यात्रियों के सफर करने की क्षमता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है जो ट्रेनों को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है जो हाइड्रोजन रिसाव, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। जींद से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए दीपेंद्र कुमार।
0: संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के पूर्व कार्यकारी निदेशक और नॉर्वे के पूर्व पर्यावरण मंत्री एरिक सोलहिम ने भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी के शुभारंभ का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोलहिम ने इसे भारत के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क व्यवस्था को मजबूत करना, यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाना और आर्थिक विकास को गति देना है। प्रधानमंत्री

0: आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें केरलम के 6 रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय डीजीएमए ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है।
1: यह परामर्श खाड़ी क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और हाल के दिनों में व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों को देखते हुए जारी किया गया है। महानिदेशालय का कहना है कि इन घटनाओं से संघर्ष प्रभावित क्षेत्र में कार्यरत नाविकों और व्यापारिक जहाजों के लिए जोखिम काफी बढ़ गया है। समुद्री प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण के साथ साथ भारतीय जहाजों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। आपातकालीन स्थिति में महानिदेशालय ने सभी नाविकों और जहाजों से महानिदेशालय संचार केंद्र या भारतीय नौसेना के सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र से तत्काल संपर्क करने की सलाह दी है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज रात 3 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। श्री शाह कल राज्य के जुमागाज के सीमा चौक स्थित सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की 18वीं बटालियन से मिलेंगे और प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वे वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे तथा कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय गृह मंत्री सिलीगुड़ी स्थित उत्तर कन्या में कई उच्च स्तरीय बैठकों का अध्यक्षता करेंगे। इन बैठकों में विभिन्न प्रशासनिक विषय, पश्चिम बंगाल में नए आपराधिक कानूनों का कार्यान्वयन तथा जन्म मृत्यु पंजीकरण की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। शाम को वह कलकत्ता के लिए रवाना होंगे। रविवार श्री शाह पश्चिम बंगाल के कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसके अलावा वह कलकत्ता में राष्ट्रीय पुस्तकालय में नवनिर्मित वर्ल्ड म्यूजियम का उद्घाटन करेंगे। बाद में वह अमूल बंगाल डायरी का आधारशिला रखेंगे। संदीपन दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार ने इस रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित करने का कार्यक्रम है। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र सम्मेलन भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में वस्त्र निर्माण, उनके आदान प्रदान, नवाचार और निवेश के लिए एक प्रमुख वैश्विक गंतव्य के रूप में देश की स्थिति को और मजबूत किया गया है। 4 दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को मजबूत करना, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना तथा संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला को एक मंच पर प्रदर्शित करना था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 जुलाई से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर जाएंगी। ये किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की इन देशों की पहली यात्रा होगी। विदेश मंत्रालय के अनुसार ये यात्रा इन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और पूर्वी यूरोप क्षेत्र के साथ सहयोग को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। एक रिपोर्ट।
3: राष्ट्रपति मुर्मू 20 जुलाई को मोल्दोवा पहुंचेंगी, जहां वे राष्ट्रपति माया सैंडू से द्विपक्षीय वार्ता के अलावा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से मुलाकात कर व्यापार मंच को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति 21 जुलाई को उत्तरी मैसेडोनिया जाएंगी, जहां वे राष्ट्रपति गोर्डोना सिल्जनवोस्का दावकोवा, क्रिस्टिजन मिकोस्की और विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति उत्तरी मैसेडोनिया की संसद और भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू 23 जुलाई से 2 दिवसीय रोमानिया यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे राष्ट्रपति निकोसोर डैंस सहित वहां के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगी। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। संघ ने पाकिस्तान से कहा है कि व्यापारिक लाभ पाने के लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करना होगा। संघ ने कहा है कि जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस प्लस के अंतर्गत पाकिस्तान को व्यापार लाभ 2027 से संशोधित जीएसपी ढांचे के तहत

0: अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुपालन पर निर्भर करेगी। ये टिप्पणियां यूरोपीय आयोग और विदेश मामलों तथा सुरक्षा नीति के लिए यूरोपीय संघ के उच्च प्रतिनिधि द्वारा तैयार की गई 2023-2025 अवधि की नवीनतम संयुक्त निगरानी रिपोर्ट में की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को अब भी भेदभाव, व्यक्तिगत हमलों, भीड़ हिंसा और पूजा स्थलों को नुकसान जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गिलगित बाल्टिस्तान विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है। इसमें पाकिस्तान की संघीय सरकार से पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को अस्थायी प्रांतीय दर्जा और संवैधानिक तथा राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। दोनों पक्षों के समर्थन से पारित ये प्रस्ताव कल सत्र के दौरान सांसद जलाल अली शाह ने पेश किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर अमेरिकी चुनावों में हस्तक्षेप करने के लिए एक व्यापक अभियान चलाने का आरोप लगाया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस से राष्ट्रीय टेलीविजन पर अपने संबोधन में चुनाव सुरक्षा से संबंधित खुफिया रिकॉर्ड को तत्काल सार्वजनिक करने की घोषणा की। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 1% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 771 अंक बढ़कर 77,957 पर, जबकि निफ्टी 195 अंक की बढ़त के साथ 24,268 पर कारोबार कर रहा था। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और ओडिशा के कुछ भागों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में भी आज मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु को जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के क्वार्टर फाइनल से हटने के बाद वॉकओवर मिला। क्वार्टर फाइनल मैच शुरू होने से पहले ही रद्द कर दिया गया। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला चीन की विश्व नंबर 4 चेन युफेई से होगा। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक पड़ाव पर पहुंच गई। भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ के भव्य रथ ग्रैंड रोड पर अपनी औपचारिक यात्रा पूरी करते हुए श्री गुंडीचा मंदिर के निकट स्थित पवित्र स्थल शारदाबली पहुंच गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद में भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय ने जहाज मालिकों को हुर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न करने के निर्देश दिए। यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, व्यापारिक लाभ पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करें। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश का अनुमान और भारत की पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: अमरनाथ जी यात्रा 2024 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं। एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज पर, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, डीटीएच और न्यूज ऑन एयर की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए।
2: पसंदीदा प्रोग्राम।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल, एफएम पहलगाम, डीटीएच और न्यूज ऑन एयर की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए। श्रोताओं, आपको लेटेस्ट अपडेट के हवाले से अगर बताएं तो अभी दोपहर 2 बजे तक कुल 13,129 श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन प्राप्त कर लिए हैं, जिनमें पुरुषों की संख्या है 8,954, महिलाओं की संख्या है 3,828, बालकों की संख्या है 161, 46 साधु नौसाध्वी, 8 ट्रांसजेंडर और सुरक्षा कर्मियों की संख्या है 123। बने रहिए एफएम बालतल, एफएम पहलगाम के संग।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
0: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ रखें।
2: आप श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण सुन रहे हैं। एफएम बालतल, एफएम पहलगाम, डीटीएच और न्यूज ऑन एयर की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए। हमारे साथ जम्मू से हमारे संवाददाता जावेद मेहराब जुड़ चुके हैं। आइए सुनते हैं क्या अपडेट्स हैं उनके पास। जी जावेद
3: जी, पवित्र श्री अमरनाथ जी के श्रद्धालुओं का समागम यहाँ जम्मू में देखते ही बनता है और जैसा कि हमारी कोशिश होती है कि हम नए अपडेट्स में तीर्थयात्रियों श्रद्धालुओं की जो उनके यहाँ रहन सहन, उनका यहाँ निकलना पहुँचना, इन सब के बारे में जहाँ हम अपडेट करते हैं, वहीं ये कोशिश होती है कि हम अपने श्रोताओं तक वो सारी बातें पहुँचाएं जिनके जरिए तीर्थ यात्रा का ये समागम किस तरह से चल रहा है उसकी भी जानकारी दें। तो मैं बताऊं कि शहर में तीर्थयात्री यहाँ के बाजारों में जहाँ घूमते भी नजर आ रहे हैं, आज भी श्रद्धालुओं का 14वां जत्था जो है जोश जज्बे के साथ रवाना हुआ। सुबह तड़के भगवती नगर के आधार शिविर में श्रद्धालुओं के जयघोष चारों ओर गूंज रहे थे और वहीं यहां श्रद्धालुओं के जोश जज्बे को कायम रखने में खासतौर पर आधार शिविर भगवती नगर में भक्ति संगीत, स्थानीय कलाकारों की शिव भक्ति के भजन और अपने और उन कलाकारों का नृत्य का जो प्रदर्शन होता है वो भी इस जोश जज्बे को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ता, जिसकी वजह से तवी रिवर फ्रंट और खासतौर पर भगवती नगर का आधार शिविर स्थान जो है श्रद्धालुओं को हर तरह से लुभाने में अपना भरपूर किरदार निभाता है। दिन में जहां श्रद्धालुओं को तीर्थ यात्रा की प्रक्रियाओं में व्यस्त होते हैं, वहीं शाम होते होते यहाँ तवी रिवर फ्रंट पर धार्मिक आस्था और आधुनिक पर्यटन का जो अनोखा संगम देखने को मिलता है वो जम्मू स्मार्ट सिटी की ओर से विकसित इस तवी रिवर फ्रंट पर अमरनाथ यात्रा के दौरान विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। इसमें यात्रा के पर आने वाले श्रद्धालुओं को दर्शन के साथ साथ शहर के इस कला, संगीत और खास तौर पर भजन कीर्तन जो यहाँ खास तौर पर इन दोनों शिविरों पर श्रद्धालुओं के लिए होता है, उसका आनंद लेते श्रद्धालु देर शाम महाआरती में हिस्सा लेते देखा जा सकता है। और इस कड़ी में हर एक श्रद्धालु जो है खास तौर पर शाम को जब ये जो तवी रिवर फ्रंट जो होता है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से सजाया गया होता है और जब आरती शुरू होती है तो खास तौर पर जो श्रद्धालु होते हैं वो कोशिश करते हैं कि वो इस महाआरती में हिस्सा लें और इस महाआरती को लगभग हर रोज किया जाता है और कोशिश होती है कि श्रद्धालु ज्यादा से ज्यादा इस महाआरती में जुड़े। कल देर शाम भी कार्यक्रम के दौरान जम्मू स्मार्ट सिटी के जो प्रमुख हैं वो यहाँ पहुंचे थे, जो कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर भी हैं, वो यहाँ मौजूद थे। उन्होंने जहाँ व्यवस्थाओं का जायजा लिया वहीं महाआरती में भी हिस्सा लिया और श्रद्धालुओं से इस बीच बातचीत भी की व्यवस्थाओं को लेकर और खासतौर पर जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो शहर में रोल है इस यात्रा को खास तौर पर स्वच्छता के साथ जोड़ने का उसको लेकर भी तीर्थयात्रियों से बातचीत की गई और तीर्थयात्रियों ने भी अपने जो जज्बात है जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर है उसके साथ साझा किए और जो ये महाआरती का जो ये खास तौर का पर्व है उसको पर्यटन से भी जोड़ा जा रहा है ताकि न सिर्फ जो यात्री हैं बाबा बर्फानी के जो श्रद्धालु हैं वो बल्कि माता वैष्णो देवी के श्रद्धालु भी इस महाआरती में हिस्सा लेते नजर आते हैं और शहर में एक यादगार अनुभव के से परिचित कराने का जो सिलसिला यहाँ की विभिन्न संस्थाओं ने और खास तौर पर जो सरकारी संस्थाएं हैं उन्होंने उठाया है उसको बखूबी किया जाता है, जिसमें सरकारी कर्मचारी भी खास तौर पर अपना रोल निभाते हैं और तवी रिवर फ्रंट पर जो तवी नदी पर जो ये महाआरती का सामूहिक नजारा होता है वो वाकई देखने वाला होता है और उसमें खास तौर पर जो श्रद्धालु है वो खुलकर हिस्सा लेते हैं और महाआरती में अपना योगदान भी देते हैं। तो इस तरह से जो यात्रा का जो ये सिलसिला है वो लगातार जारी है और श्रद्धालुओं को रेलवे स्टेशन के आसपास सबसे ज्यादा देखा जा सकता है, जहां श्रद्धालु दर्शन कर वापस अपने घरों को लौट रहे हैं, वहीं उनके चेहरे बाबा बर्फानी के दर्शन के बाद रौनक से भी खिल उठे हैं और वो बिल्कुल जोश जज्बे के साथ अपने घर की तरफ रवाना हो रहे हैं। वहीं श्रद्धालु जो यहाँ पहुंच रहे हैं उन्हें बाबा बर्फानी के दर्शन की बेकरारी भी उनके चेहरे पर खास नजर आती है। एक तरफ जहां खुशी, एक तरफ जहां बेकरारी, ये दोनों का संगम जो होता है ये श्रद्धालुओं के चेहरों पर देखा जा सकता है और ये पर्व आस्था, विश्वास और बेहतर वातावरण में चल रहा है और यात्रा पूरी तरह से सरकारी दिशा निर्देश के मुताबिक चल रही है और जगह जगह पर उन जो दिशा निर्देश है उन पर अमल करने की बात की जाती है और जो तीर्थयात्री यहाँ पहुंच रहे हैं उन्हें जगह जगह पर ऐसे साइन बोर्ड्स भी मिलते हैं जहाँ किसी से किसी भी बात के लिए उनको बाज़ाब्ता फोन नंबर रखे गए हैं जिन पर वो अपनी जो परेशानी हो, किसी भी तरह की व्यवस्था के बारे में जानना हो उन फोन नंबर्स पर वो अपनी बात कर्मचारियों से कर सकते हैं और इस यात्रा को बेहतर तौर पर चलने की जो स्थिति है वो बहुत ही बेहतर तरीके से चल रही है और इस दौरान महीने के अंत में जहाँ अभी जो ऐलान हुआ है जो महंत दीपेंद्र गिरी है उन्होंने 29 जुलाई को छड़ी मुबारक के पूजन का

0: सफर भी शुरू होने का ऐलान किया है, तो इसके लिए भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और तीर्थयात्री बेहतर वातावरण में यहाँ जम्मू से न सिर्फ बाबा बर्फानी के द्वार की तरफ जा रहे हैं बल्कि दर्शन कर वापस भी लौट रहे हैं।
1: जी जावेद, ये भी जानना चाहेंगे कि प्रशासन दावा कर रहा है कि यात्रियों को डिवाइन गेस्ट्स की तरह ट्रीट किया जा रहा है। आप वहाँ मौजूद हैं, तो मुझे ये बताएं कि मास अकोमोडेशन में ठहरने वाले यात्रियों को क्या सच में कोई दिक्कत नहीं आ रही है?
0: देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो ये ऐलान किया गया था, जो बाजाबता जो उपराज्यपाल है उन्होंने ये अपने यहाँ पहुंचने पर कही थी कि जो तीर्थयात्री हैं उन्हें मेहमानों की तरह और बेहतर मेहमानों की तरह ट्रीट किया जाए,
1: जी
0: तो उसमें किसी तरह की कमी नहीं है। देखिए, हजारों की तादाद में यहाँ तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं, उनके रहने खाने पीने और हर तरह की जो सहूलियात यहाँ दी जा रही है, ये चैलेंज भी है तमाम इस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उन कर्मचारियों के लिए जो 24 घंटे यहाँ शिफ्ट्स में काम कर रहे हैं, जिसमें देखिए पीडीडी बिजली विभाग के कर्मचारी हैं, जल विभाग के कर्मचारी हैं, जो 24 घंटे बिजली का इंतजाम, बिजली को किसी तरह से कोई बाधा ना आए तीर्थयात्रियों के लिए, गर्मी का मौसम है, उमस का मौसम है, उसी दौरान पानी की किसी तरह से कोई कमी ना हो उसको देख रहे हैं। उसके अलावा जो हमारे रोड ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर्स हैं वो भी शिफ्ट्स में काम कर रहे हैं, 24 घंटे काम कर रहे हैं। उनसे भी हमारी बात हुई, जनरल मैनेजर से, तो उनका कहना था कि ये जो ड्राइवर्स हैं ये भी सुबह शाम शिफ्ट्स में काम कर रहे हैं ताकि तीर्थयात्रियों को किसी भी तरह से कोई परेशानी ना हो। उनके लिए भी 24 घंटे बराबर, एक तरफ से तीर्थयात्रा वापस आ रही है, एक तरफ से तीर्थयात्रा बाबा बर्फानी की तरफ जा रही है, तो कोशिश स्थानीय जो लोगों की भी है और उसके अलावा जो संस्थाएं हैं, क्योंकि ये मिलकर काम होगा, ये सिर्फ सरकारी कर्मचारियों का ही काम नहीं है, उनका काम है
1: बिल्कुल
0: इंतजाम रखना, लेकिन उसके अलावा जो यहाँ स्थानीय लोग हैं वो भी अपना भरपूर रोल निभा रहे हैं। किसी तरह से कोई ऐसी बात देखने को नहीं मिली है जहाँ तीर्थयात्री बिल्कुल परेशान हो, किसी तरह से व्यवस्थाओं को लेकर कोई परेशानी हो, लेकिन उसके बावजूद भी ये बहुत बड़ा एक समागम है यहाँ पर चल रहा है, इसमें हर तरह के परेशानी को दूर करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन कोशिश ये जरूर हो रही है कि तीर्थयात्रियों को बाजाबता उसी मेहमान नवाजी का उनकी उन्हें मेहमान नवाजी से रखा जाए ताकि जो कहा गया है उसे बिल्कुल ग्राउंड पर जीरो पर भी देखा जा सके,
1: देखा
0: लेकिन
1: जा सके। बिल्कुल
0: अभी तक जो दिख रहा है वो यही है कि इंतजाम को लेकर किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है,
1: नहीं किया जा
0: सरकारी
1: रहा।
0: कर्मचारियों की 24 घंटे ड्यूटी है। मैं कहता हूं कि जो यहाँ के तहसीलदार हैं, यहाँ के जो उच्च अधिकारी हैं, वो भी 24 घंटे इस तीर्थ यात्रा के साथ जुड़े हुए हैं और हर दिन इसकी समीक्षा होती है कि किसी तरह से कोई परेशानी ना हो, लेकिन उसके साथ साथ जो स्थानीय लोग भी हैं वो भी अपनी लेवल पर, जहां बाजारों में, जहां स्थानीय जगहों पर लंगर और दूसरी व्यवस्थाएं तीर्थयात्रियों को दी जा रही है, यहाँ मंदिरों में जिस तरह का समागम है, पूरे शहर में जो मंदिर है, क्योंकि इसको मंदिरों का शहर कहा जाता है, आपको हर
1: बिल्कुल

0: बाजार में मंदिर दिखेंगे जम्मू के। तो जो एक तो जो मशहूर मंदिर है जहां रघुनाथ बाजार है, पीर खो है, उसके अलावा जो रंबेश्वर मंदिर है और जो शिव स्थल है उन पे भी खास तौर पर तीर्थयात्रियों का ख्याल रखा जा रहा है। और जो सुरक्षा की जो एजेंसियां हैं उसके अलावा जो सुरक्षा पर तैनात हमारे पुलिस और फौज के जो जवान हैं सीआरपीएफ के, वो 2400 घंटे अपनी ड्यूटी ईमानदारी के साथ दे रहे हैं। और ये पूरी तरह से सुनिश्चित किया जा रहा है कि तीर्थयात्रियों की मेहमान नवाजी में किसी तरह की कोई कमी न की रह जाए, उसको सुनिश्चित किया जा रहा है।
1: चलिए, ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे लोकल्स जो हैं वो अपना रोल बखूबी निभा रहे हैं। यहाँ पर जावेद, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि चेक पॉइंट्स पर जो सीसीटीवी और क्विक रिएक्शन टीम्स लगाई गई हैं, क्या उनकी वजह से चेकिंग में ज़्यादा समय लग रहा है, या जो प्राइवेट गाड़ियाँ हैं, अनरजिस्टर्ड टैक्सीज है, पर्सनल कार्स से जो आ रहे हैं, उनके लिए चेकिंग के लिए क्या नियम बनाए गए हैं?
0: देखिए, यहाँ जो खास तौर पर जो पहले तीर्थ यात्रा में होता था वो शहर के बीचों बीच जो ट्रांजिट कैंप्स होते थे उनकी वजह से जो कठिनाइयां होती थी तीर्थ यात्रियों को गाड़ी पकड़ने में, गाड़ी पार्क करने में, जो लोग आ रहे हैं बसों से आ रहे हैं, निजी गाड़ियों में आ रहे हैं। लेकिन अब इस बार जो ये तवी रिवर फ्रंट का जो एरिया है ये बिल्कुल शहर के अंदर भी है और शहर के बाहर भी है, इसकी वजह से किसी तरह से स्थानीय लोगों को कोई परेशानी नहीं है। और खास तौर पर ये पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरे और यहाँ जो चेक पॉइंट्स रखे गए हैं वो बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से रखे गए हैं ताकि तीर्थयात्रियों को जल्द से जल्द चेक भी किया जाए, क्योंकि अंदर ये तवी रिवर फ्रंट का एरिया बहुत बड़ा एरिया है और यहाँ जगह जगह पर पुलिस सीआरपीएफ के जो जो जवान हैं वो तैनात हैं और तमाम तरह की सुरक्षा को बनाए हुए हैं। इसमें कई बार बैग्स की चेकिंग के दौरान या और क्योंकि सुरक्षा का जो जो ये जो सुरक्षा को लेकर जो सवाल होते हैं वो बहुत कठिन भी होते हैं, उसको लेकर किसी भी तरह की कोई चूक नहीं होनी चाहिए, उसी को सुनिश्चित करने के लिए तभी रिवर फ्रंट और खास तौर पर जो आधार शिविर भगवती नगर है यहाँ 2400 घंटे जो है वो तीर्थयात्री बाजाबता सीसीटीवी कैमरे की रीच में होते हैं और उन्हें बाजाबता एक टीम जो है वो एक देखती देख भी रही होती है कहाँ से तीर्थयात्री अंदर आ रहे हैं, कहाँ से तीर्थयात्री बाहर जा रहे हैं, किस चेक पॉइंट पर क्या क्या हो रहा है, वो सारी चीजों पर नजर रखी जा रही है। एक बाजाबता एक ऑपरेशनलाइज एक सिस्टम के साथ इस पूरे तवी रिवर फ्रंट और खास तौर पर बाबा भगवती नगर के जो निवास स्थान है वहां उसको पूरी तरह से रखा गया है ताकि तीर्थयात्रियों को जल्द से जल्द अंदर प्रवेश करने को भी मिले और जो तीर्थयात्री अपना कार्य खत्म करके बाहर शहर की तरफ जाना चाहते हैं उन्हें भी किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो, उसका खास ख्याल रखा गया है। तकलीफें हैं क्योंकि यहाँ गर्मी और उमस की वजह से तीर्थयात्रियों को थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि सैकड़ों की तादाद में तीर्थयात्री लगातार आ रहे हैं और लगातार निकल भी रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा काम भी है। तकलीफें जरूर हो सकती हैं लेकिन जो सिस्टम बनाया गया है उस पर अमल करने की पूरी तरह से दिशा निर्देश सख्त भी हैं, रजिस्ट्रेशन को लेकर, आपका RFID कार्ड लेना, सारी चीजों को सुनिश्चित किया गया है और तीर्थयात्रियों को खास तौर पर ये कहा गया है कि अपने सारे जो कागजात है, अपनी सारी जो दस्तावेज है वो अपने आप साथ रखे ताकि किसी भी चेक पॉइंट पर अगर वो शहर के अंदर जाते हैं, विभिन्न जगहों पर चेक पॉइंट बनाए गए हैं, जब आप कागज दिखाते हैं, अपना दस्तावेज दिखाते हैं, अपना कार्ड दिखाते हैं, तो किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। जहां आप इस चीज को कहीं मिस करते हैं या कहीं आप भूल जाते हैं वहां सवाल जवाब ज्यादा होते हैं, वहां रुक जाता है मामला, तो उसको लेकर जो सुरक्षा एजेंसी है वो पूरी तरह से सख्त भी है और उन्हें खास तौर पर इन चेक पॉइंट्स और सीसीटीवी कैमरास को खास तौर पर उन्होंने मतलब सख्त रखा हुआ है। इस पर किसी भी तरह का कंप्रोमाइज करने की कोई दिशा निर्देश नहीं है, बिल्कुल पूरी तरह से इसको सख्त बनाया गया है। तो एक सिस्टम जो है उसको तभी चलाया जा सकता है जब आप उसमें अनुशासन रखते हैं, तो अनुशासित तरीके से जब तीर्थ यात्रा चलेगी तो हर एक जो श्रद्धालु है वो दर्शन बाबा बर्फानी के दर्शन कर भी पाएगा और सही सलामत अपने घर पहुंच भी जाएगा। जैसे ही आप इस डेरे को कहीं इग्नोर करेंगे, कहीं इसको टालेंगे तो

0: प्रॉब्लम्स जो है, परेशानी जो है वो सामने आएगी, इसीलिए इस पर सख्ती से अमल किया जा रहा है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद जावेद आपका, आपने जम्मू भगवती नगर बेस कैंप से एक एक बारीकी हम तक पहुंचाई है। आप वहाँ अपना ख्याल रखिए और भक्तों को गाइड करते रहिए, आप अपना ख्याल रखिएगा।
0: बहुत शुक्रिया, बहुत
1: बहुत
0: शुक्रिया।
1: शुक्रिया आपका। तो श्रोताओं, ये थे हमारे रिपोर्टर जावेद मेहराब जम्मू से, बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्ट के साथ। अगर आप भी जम्मू पहुंच रहे हैं तो याद रखें कि रास्ते में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ कॉपरेट करें और अपना RFID कार्ड हमेशा गले में पहन कर रखें। सुनते रहिए श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण, जो कि आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, DTH और न्यूज़ ऑन एयर की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल पर भी हम उपलब्ध हैं।

0: यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
0: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ रखें। अमरनाथ।

0: के लिए कुछ खास जानकारी।
1: आपको अकेले ट्रैक नहीं करना चाहिए, हमेशा एक समूह में यात्रा करें और सुनिश्चित करें कि समूह में शामिल सभी लोग आपके सामने या पीछे चल रहे हैं, हमेशा आपकी दृष्टि में रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनसे अलग ना हों।
0: किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाए, इसके लिए आपको अपने समूह के किसी सदस्य जिसके साथ आप यात्रा कर रहे हैं का नाम, पता और मोबाइल टेलीफोन नंबर का एक नोट अपनी जेब में जरूर रखें। साथ ही अपना यात्रा परमिट या कोई और पहचान पत्र भी अपने साथ रखें।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिएं।
0: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्टपेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्रीपेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करेगा। अमरनाथ
2: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, FM पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, DTH और न्यूज़ ऑन एयर की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए।
0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
0: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम एक महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए।
2: आप श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण सुन रहे हैं FM बालतल, FM पहलगाम, DTH और न्यूज़ ऑन एयर की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए। श्रोताओं, चलिए सीधे रुख करते हैं जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के सबसे बड़े हॉल्ट बानीहल का, जहां से हमारे संवाददाता मोहम्मद तस्कीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी तस्कीन
3: जी, शुक्रिया। जो श्री अमरनाथ यात्रा और नेशनल हाईवे, तो इस हवाले से ये कि जो सुबह काफले वो कश्मीर में पहुंच चुके हैं, करीबन 12:30 बजे लास्ट यहां से जो गाड़ी यहां से भेजी गई 11:30 और 1 बजे के दरमियान जो लास्ट जम्मू से श्रीनगर की तरफ जो पहलगाम और बालतल के रास्ते जाते हैं, क्योंकि आपको रोज हम बताते हैं कि बालतल वाला जो कानवाय है वो पहले निकल आता है, उसके बाद पहलगाम आता है। तो दोनों काफले कश्मीर की तरफ रवाना हो चुके दोपहर के बाद ही। तो इसी तरह जो वापस जो डाउन कानवाय में बालतल से जम्मू की तरफ जो ट्रैफिक आ रहा था, इसमें 112 गाड़ियां थी और 4000 से जायद यात्री सवार थे, तो वो भी रामबन डिस्ट्रिक्ट से निकलकर इस उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में दाखिल हो चुके हैं, जबकि पहलगाम वाला काफला करीब है कि वो जम्मू पहुंच चुका हो, क्योंकि 3:30 बज चुके हैं, तो उम्मीद है कि वो आसपास जम्मू के आसपास ही होगा। मजमुई तौर पर जो आज सुबह से ही हल्के हल्के बादलों का सिलसिला जारी है पूरे हाईवे के क्षेत्र में, रामबन और बानहाल के सेक्टर में, तो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, उसकी वजह से जो तापमान जो तपिश है गर्मी की, उसमें थोड़ा सा राहत है अगर मजमी तौर कहेंगे। और महकमे मौसम अपने आइंदा कुछ रोज के लिए हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशों का भी इम्कान जाहिर किया हुआ है। फिलहाल जो हाईवे से जो अब यात्रा के निकालने के बाद दोनों काफले जो जम्मू और श्रीनगर की तरफ चलते हैं, उनको निकालने के बाद अब जो लोकल ट्रैफिक है, जो मुसाफिर गाड़ियां है उनका नंबर है, और वो इस वक्त ट्रैफिक बढ़ रहा है। और 3 बजे के बाद जो हम रोज अपने श्रोताओं को बताते हैं, जो श्री अमरनाथ यात्री हैं और जो टूरिस्ट हैं जो कश्मीर की सयाहत पर आ रहे हैं, तो उनके लिए ये कि 3 बजे के बाद उन्हें बानहाल काजीगुंड टनल से आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी जाती है। और इसी तरह 2 बजे के बाद ऐसी गाड़ियों को जिसमें टूरिस्ट सवार हो या जिसमें श्री अमरनाथ यात्री सवार हो, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या रजिस्टर्ड नहीं हो, तो उन दोनों सूरतों में उनको रोका जाता है 2 बजे चंद्रकूट में और 3 बजे बानहाल में, और उनको जहां पर रोका जाता है, ये यात्रा ग्राउंड जो है यात्रा के लिए लंगर जो रखे गए वहीं पर इनको ठहराया जाता है, उनके लिए पूरे इंतजाम थे वहां पर जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, और लंगर जो मैनेजमेंट से तो उनकी तरफ से 22 के करीब लंगर हमारे बानहाल में है, 12 के लंगर करीब रामबन में है, यात्रा निवास जहां पर 5,000 लोगों को ठहरने की गुंजाइश है रामबन में चंद्रकूट के इलाके में, वहां पर 2 लंगर स्पेशली बड़े 2 लंगर कायम किए गए जहां मतलब रोजाना की बुनियादों पर ये जो लेट लोग आते हैं या जो रजिस्टर्ड नहीं होते हैं उनको यहां रोका जाता है 2 बजे बाद और 3 बजे बाद बानहाल में, तो उनका इंतजाम यहीं किया जाता है। रोजाना यहां पर जो 24

0: 24 बाई 7 जो सर्विस हम कहते हैं, दिन रात जो ये जो मेहनत करते हैं, जो ये यहाँ पर यात्रा लंगर वाले हैं यात्रियों के लिए, तो उनका ये जो बहुत बड़ा रोल है इसमें, इनको खाने पिलाने में सुबह शाम, चाहे लंच हो या डिनर हो या नाश्ता हो, ब्रेकफास्ट हो, सब कुछ इनको मिलता है। तो अब रात को जो ठहरेंगे तो उनके लिए बाज़ाब्ता तौर पर इंतजाम किया जाता है, उनके लिए अलग अलग वेराइटीज बनाई जाती है और उनको ठहराया जाता है। और सुबह उनको मतलब यात्रा के जो जम्मू से कल सुबह यात्रा पहुंचेगी उससे पहले ही 6:30 के आसपास इन्हें सख्त सिक्योरिटी के बंदोबस्त में यहाँ बानहाल और रामबन से ले जाकर कश्मीर की सिक्योरिटी के हवाले किया जाता है और इनको जो इनकी मंजिल होती है, डेस्टिनेशन होती है, तो वहां पर उनको रवाना किया जाता है।
1: जी तस्कीन, हम ये भी जानना चाहेंगे कि हमारे पास जैसे कि खबर आ रही है कि बानीहाल से काजीगुंड के बीच चलने वाली ट्रेन सर्विस को यात्रा के स्मूथ कंडक्ट के लिए दोपहर के वक्त कुछ घंटों के लिए रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। इस फैसले का हाईवे पर चलने वाली यात्रियों की गाड़ियों और लोकल्स जो है उन पर ग्राउंड पर क्या असर देखने को मिल रहा है?
0: ना, ऐसा कोई नहीं है कि हाल्ट किया जाता है, क्योंकि यात्रा और इसके ये अलग अलग डायरेक्शंस में, दो मतलब हाईवे अलग है और जो रेल ट्रैफिक है वो अलग से चलता है। अलबत्ता जो जब से यात्रा शुरू हुई है उससे एक दिन पहले ही जो एक फैसला लिया गया था नॉर्थर्न रेलवे की तरफ से, उन्होंने जो एक ट्रेन सर्विस जो संगलदान और बारामूला के दरमियान चलती थी उसे बंद करने का फैसला किया गया था, और बारामूला से संगलदान के दरमियान चलती थी उसे बंद करने का, मतलब एक ट्रेन सर्विस जो आती थी एक दिन और मतलब एक ही रोज में आती और जाती थी उसे रिस्ट्रिक्ट किया गया है बानहाल तक ही। ऐसा इसलिए किया गया है कि सिक्योरिटी का सेटअप, इनका कहना है कि जो भीड़ मैनेजमेंट को काबू करना, जो सिक्योरिटी एजेंसीज ने इसमें खदशा जाहिर किया था कि भीड़ ज्यादा हो जाती है, भीड़ को काबू करना, तो विस्टाडोम की ये तो सर्विसेज हुआ करती थी जो चलती थी वो फिलहाल बंद कर दी गई है। इसके लिए ये सिक्योरिटी के रीजन बताए गए हैं। तो बाकी जो ओवरऑल ट्रैफिक है, जो रेल ट्रैफिक है, वो बानहाल कटरा जम्मू तक का जो सिलसिला है वो बराबर अपने रूटीन से चल रहा है। अलबत्ता जो वंदे भारत ट्रेन के जुड़ने के बाद थोड़ा सा जो पैसेंजर्स हैं इनमें मतलब जो टाइमिंग पहले होती, जैसे हम बानहाल से श्रीनगर तक बात करेंगे, आम हालात में जो ट्रेन का जो दौरानिया होता है, सफर का जो ड्यूरेशन होता है, वो करीबन 1.5-2 घंटा होता है। अब तो कभी कभार ज्यादा लग जाता है, क्योंकि जब आपको, क्योंकि वन वे ट्रैक है हमारा, टू वे है नहीं, तो उस वजह से जब भी अपोजिट डायरेक्शन में कोई ट्रेन आती है, खासकर बाहर, उसको रास्ता देने के लिए ट्रेनों को मुख्य मुकामात पर रोका जाता है, तो उस वजह से थोड़ा सा यात्री को, जो भी यात्री तो बहुत सारे एदाद में इससे भी सफर कर रहे हैं, ट्रेन से भी, गाड़ियों से भी, उसके अलावा जो टूरिस्ट से आते रहते हैं, क्योंकि सस्ता सफर है, हर एक की कोशिश है कि रेल से जाया जाए, लेकिन सिक्योरिटी के रीजन के, जैसे पिछले साल भी कोशिश की गई थी कि ट्रेन से, लेकिन बाद में जो खदशात जाहिर किए गए कि रेल के जरिए हम इसको मैनेज नहीं, इससे बेहतर उन्हें गाड़ियों के जरिए ही इस साल भी यात्रा लाने का फैसला किया गया। लेकिन रेल के जरिए भी जो लोग आ रहे, जैसे कि बसें जो हम अभी बोल रहे थे कि मतलब रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों हजारों लोग जो 2 बजे बाद कश्मीर का रुख करते हैं या 3 बजे बाद या बानहाल से उनको रोका जाए, इसी तरह ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेन के जरिए पहुंच रहे हैं कश्मीर, और जो ट्रेन ट्रैफिक है ओवरऑल मतलब बेहतर है। अलबत्ता बहुत बार ये जो शिकायत आती है वो कि देर होती है, ताखीर होती है, रोका जाता है ट्रेनों को जब तक दूसरी ट्रेन को रास्ता नहीं दिया जाता है।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तस्कीन, हमारे तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। आप वहाँ हाईवे पर अपना ख्याल रखिएगा और भक्तों को गाइड करते रहिएगा।
0: शुक्रिया,
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी श्रोताओं, ये थे हमारे रिपोर्टर बानीहल से मोहम्मद तस्कीन, बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्ट के साथ। तो अगर आप भी हाईवे पर हैं तो स्पीड लिमिट्स और एडमिनिस्ट्रेशन के रूल्स को ज़रूर फॉलो करें और अपना RFID कार्ड हमेशा पहन कर रखें। सुनते रहिए श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, DTH और न्यूज़ ऑन एयर की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए। श्रोताओं, अमरनाथ यात्रा मार्ग एक सेंसिटिव इको जोन है, कृपया प्लास्टिक की बोतलों और थैलियों का इस्तेमाल ना करें। कूड़ा कचरा केवल निर्धारित डस्टबिन में ही डालें। मार्ग और पवित्र गुफा के आसपास की पवित्रता और स्वच्छता बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें। बने रहिए FM बालतल, FM पहलगाम के संग।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: उन स्थानों पर ना रुकें जो चेतावनी नोटिस द्वारा चिन्हित हैं। चप्पल का उपयोग ना करें क्योंकि पवित्र गुफा के मार्ग पर खड़ी चढ़ाई है। केवल फीते वाले ट्रैकिंग शूज ही पहनें। रास्ते में शॉर्टकट का प्रयास ना करें क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है।
0: अपनी पूरी यात्रा के दौरान ऐसा कुछ भी ना करें जिससे यात्रा क्षेत्र में प्रदूषण हो या पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में प्लास्टिक के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध है और ये कानून के तहत दंडनीय है। वेस्ट मटेरियल को नजदीक के कूड़ेदान में ही फेंकें। सभी प्रकार के जैविक कचरे को हरे रंग के कूड़ेदान में ही डालना चाहिए।
2: जय बाबा बर्फानी।
3: आप श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण सुन रहे हैं। FM बालतल, FM पहलगाम, DTH और न्यूज़ ऑन एयर की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए। हमारे साथ पहलगाम से हमारे संवाददाता तारिक जुड़ चुके हैं। आइए सुनते हैं क्या अपडेट्स हैं उनके पास। जी तारिक।
4: हाँ शुक्रिया फरजाना। पहलगाम के अमरेश्वरी पर्वतों और इसके आसपास के क्षेत्र में मौसम सुहाना, शीतल और मनभावन बना हुआ है। आस्था और उत्साह और सफलता से पूर्ण इस पावन यात्रा में आज ननवन आधार शेवर से नजी होटलों खटों से हजारों श्रद्धालुओं के जत्थे चंदनवारी होते हुए शिशनाग और पंचतरनी पहुंच गए हैं। इधर शिशनाग और पंचतरनी में रात्रि विश्राम करने वाले शिव भगत आज पवित्र अमरनाथ गुफा के और बढ़ते हुए बाबा बर्फानी के दर्शन का पुण्य अर्जन करने में जुटे हुए हैं। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से 4,640 यात्रियों पर मुश्तमिल यात्रियों का 16वां जत्था कश्मीर घाटी में प्रवेश कर चुका है। इनमें से 105 छोटी बड़ी वाहनों में 3,014 यात्री शामिल थे जो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बाबा बर्फानी के प्राचीन मार्ग पहलगाम पहुंच चुके हैं। इन यात्रियों में 2,403 पुरुष, 572 महिलाएं, 31 साधु और 8 साध्वी शामिल थे। 57 दिनों पे मुश्तमिल श्री अमरनाथ जी यात्रा में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या पर अगर दृष्टि डालें तो मौसूल आंकड़ों के अनुसार 3 जुलाई से कल शाम तक 3,43,882 भक्तों को बाबा बर्फानी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जबकि बीते दिन 19,357 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में दर्शन किए। अभी रिपोर्ट फाइल करने किए जाने तक आज दर्शन करने वाले यात्रियों की संख्या 13,129 तक पहुंच गई है और दर्शन की प्रक्रिया जारी है। इस बीच आज उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने रवायती यात्रा मार्ग पहलगाम सतत ननवन आधार शिविर का तफसीली दौरा किया और श्री अमरनाथ जी यात्रा से जुड़े सभी रिश्ताओं की जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर वीके वर्दी, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अनुष गर्ग, नोडल ऑफिसर यात्रा मार्ग पहलगाम शाहिद चौधरी, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल साउथ रेंज जावेद इकबाल मुत्तू, जिला कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर बिलाल महीद्दीन, SSP अनंतनाग अमोद अशोक नागपुर, कैंप जो कैंप डायरेक्टर है विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने उपराज्यपाल को यात्रा व्यवस्थाओं, सुरक्षा बंदोबस्तों, यात्रा सहूलियतों और इन अन्य परीक्षा की तैयारियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। आज उपराज्यपाल ने यात्रा में लगे सभी विभागों के बीच समन्वय, चौकसी और श्रद्धालुओं की अंतम से अंतम सहूलियात उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया है। इसके साथ ही छड़ी मुबारक के कस्टोडियन महंत दीपेंद्र गिरी जी ने वर्ष 2026 के सालाना छड़ी मुबारक श्री अमरनाथ जी यात्रा के कार्यक्रम का ऐलान किया। उनके अनुसार प्राचीन परंपरा और धार्मिक रवायात के मुताबिक यात्रा के आगाज से जुड़े भूमि पूजन, नवग्रह पूजन और दुर्जा हवन जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक रसूमात इस वर्ष बुध 29 जुलाई को अषाढ़ पूर्णिमा यानी व्यास पूर्णिमा के पवित्र अवसर पर पहलगाम में संपन्न किया जाएगा। अब बात मौसम की है तो बात पहलगाम के आसपास के क्षेत्र और यात्रा मार्ग पर मौसम सुहाना और सुखद बना हुआ है, जबकि आकाश में हल्के बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार इस समय पहलगाम से पवित्र गुफा तक का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। जम्मू से पवित्र गुफा तक के यात्रा मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, ऊंचे पहाड़ों, क्षेत्र और नगर कस्बजात में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस, केंद्रीय सुरक्षा बल और दीगर सुरक्षा एजेंसियां अधिकतर सुरक्षा उपकरणों से लैस होकर दिन रात अपनी सेवाएं अंजाम दे रही है। जी फरजाना
3: जी, तारिक, हम ये भी जानना चाहते हैं कि प्रशासन ने इस बार ट्रैक्स पर जीरो वेस्ट यात्रा का नया जो संकल्प है वो लिया है, तो ये जानना चाहते हैं कि रास्ते पर प्लास्टिक बॉटल्स या रैपर्स साफ करने के लिए जो हमारे सफाई कर्मचारी है वो किस तरह काम कर रहे हैं, या जो यात्रियों के टेंट्स हैं या लंगर्स हैं उनके पास बायोडिग्रेडेबल या नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरे को अलग अलग करने के डस्टबिन्स दिख रहे हैं?
4: नहीं रहे, बल्कि एक बाजबता तौर पे एक विभाग के तौर पे वो बनाया गया है। ये जो सफाई कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा भाग बनाया गया है, बल्कि इसके साथ ही जो बाकी कुछ एनजीओज भी है ऐसे जो एक इस काम पे लगे हुए हैं कि कहीं पे भी इस ग्रीन लीफ में कोई ऐसी गंदगी ना डालें। और जिस तरीके से बाकी जो यात्रा प्रशासन ने जगह जगह पे होर्डिंग्स के साथ साथ वो जो जागरूकता की बात की है, जागरूकता के जरिए उन्हें बताया जा रहा है कि किसी भी जगह पे, चाहे आप पहलगाम से लेके पूरे पवित्र गुफा तक, किसी भी जगह कोई गंद नहीं पड़ती है, बल्कि जगह जगह पे डस्टबिन लगे हुए हैं जो मुख्तलिफ रंगों के हैं। और वहां लोग खड़े होते हैं, पुलिस जो भी अधिकारी है उनको समझाते हैं, और बाजाब्ता तौर पे पहलगाम से लेकर उन्होंने आधार शिविर से लेके यात्रा मार्ग के होते हुए पूरा जो पवित्र गुफा है वहां तक बाजाब्ता ये डिपार्टमेंट लगा हुआ है जो सफाई पे लगे हुए, इसलिए क्योंकि पहले भी हमारे जो वजीर आजम हिंद है नरेंद्र मोदी जी ने पहले भी ये कहा था कि इस साल हम या इस वर्ष हम इसको ग्रीन यात्रा के तौर पे मनाएंगे। और उन्होंने और भी कुछ कहा है कि अगर हर एक यात्री भी अपने साथ एक एक बूटा दरख्त का लेकर वहाँ उसकी जो वहाँ उगा देंगे तो ये सबसे ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये जो एरिया है ये ग्रीनरी का एरिया और इसकी हिफाजत इस तरीके से करनी है ताकि ये जो वहाँ पवित्र यात्रा है या पवित्र जो हमारा स्थान है वो महफूज रहे, इसलिए इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी कोई गंदगी नहीं है। हम खुद भी देखते हैं, मैं कल नहीं परसों मैं चंदनवारी तक गया था और मैंने पूरी जो एरिया को देखा था, पूरी बिल्कुल सफाई है और ये जो विभाग है अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रहे हैं।
3: जी, बहुत जरूरी है तारे, क्योंकि ये सेंसिटिव इको जोन है तो इसको पवित्र रखना हम सबका जो है वो फर्ज है। तो यहाँ पर हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो हमारे लोकल दुकानदार हैं या हमारे कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट बेचने वाले जो भाई हैं, इस साल के रिकॉर्ड 3,25,000 फुटफॉल पर उनका क्या कहना है, उनका बिजनेस जो है वो कैसा चल रहा है?
4: थोड़ा सा कदरे हम इसको कहेंगे कि कदरे बेहतर है। कुछ लोग हैं जो अभी नॉर्मल बेस कैंप में अंदर से भी कुछ ऐसी दुकानें लगी हुई है, ऐसे स्टॉल्स लगे हुए हैं जहाँ वस्त्र भी लगते हैं जो मौसम के हिसाब से या अन्य बाकी जो यहाँ के कल्चर के हिसाब से, हैंडीक्राफ्ट के हिसाब से बहुत सारी चीजें वहाँ, बहुत सारी दुकानें ऐसी लगी है जो ठीक ठाक काम कर रहे हैं। और उसके बगैर भी जो पहलगाम मार्केट से होते हुए जब बाहर निकलते हैं जो यात्री कभी कभार बाहर भी रहते हैं, और बहुत सारे ज्यादा यात्री भी जो निजी होटलों हटों में रुकते हैं वो भी शॉपिंग करते हैं, तो लोग काफी खुश है, उत्साह है, और फिलहाल वो उनका सबसे बड़ा ये है कि हम उनकी सेवादारी में लगे रहे।
3: चलिए, बहुत अच्छी बात है। हम ये भी जानते हैं कि पहाड़ों के इस मुश्किल रास्तों पर इस बार 5G कनेक्टिविटी और टेम्प्ररी मोबाइल टॉवर्स लगाए गए हैं, तो क्या यात्री जो हैं वो हाई ऑल्टीट्यूड कैंप्स में अपने परिवार से वीडियो कॉल करने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, उनको अच्छे से कर पा रहे हैं?
4: एब्सोल्युटली कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बिल्कुल ये जो मवासलाती निजाम है उनके लिए खसूसी टावर लगाए गए हैं जो जगह टू जगह बिल्कुल वो अपने साथ कनेक्ट होते हैं, और पूरे मार्ग में यात्री जो है वो अपने घर के साथ संबंध रख सकते हैं, वो बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल्स कर सकते हैं। जैसे कि हमने भी सोशल मीडिया पे कई ऐसे वीडियोस देखे जो लाइव थे, और वो लाइव मुख्तलिफ ऊंचे पर्वतों से लिए गए हैं जहाँ यात्रा गुजरती है, तो बिल्कुल किसी ने आज तक ये शिकायत नहीं की है कि कोई मवासलाती या बिजली इवन या पानी का कोई मसला वहां है। ये सारी चीज ऐसे है कि जैसे वो अपने घर में चले जा रहे हैं।
3: बहुत अच्छी बात है। तो ये भी हम तारिक जानते हैं कि इस बार जो है यात्रा में जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो है उनको बैन लगाया गया है। तो जो हमारे यात्री है या जो हमारे लंगर वाले हैं, क्या वो इस रूल को फॉलो कर रहे हैं?
4: फॉलो भी कर रहे हैं, और उसके साथ ही यहाँ के जो विभाग है इसके फूड एंड सप्लाईज के होते हैं, पुलिस होते हैं उनके साथ, उनके साथ सीआरपीज होती है, बहुत सारे एजेंसियां उनके साथ होती है, म्यूनसिपल काउंसिलर्स होते हैं, म्यूनसिपल कमेटीज होती है जो चेक करते हैं, जो इवन हर एक जो जितने भी लंगर लगे हुए हैं वहाँ, जो कुछ तो मुफ्त है बिल्कुल सरकारी तौर पर, कुछ गैर सरकारी, उनकी बाजाबता चेकिंग होती है, और दुकानदारों से भी जंक फूड को ना बेचने की अपील पहले भी की गई है और उन्होंने उस पे अमल भी किया है। और साथ ही ये जो यात्री है हमारे, उनका एक टारगेट होता है कि अपने वो दर्शन का टारगेट होता है, अपने बाबा के हाँ जाने का दर्शन होता है, वही उत्साह होता है उनका,
3: जी
4: वही शौक होता है उसे, उसमें ये शायद जंक फूड वगैरह को प्रयोग नहीं करते हैं। अलबत्ता उन्हें जगह जगह पे जितने भी इंसान को जरूरत है खाने पीने की, जो
3: हेल्दी ऑप्शंस,
4: शुद्ध खाने पीने की, वो बिल्कुल उनको मिलता है।
3: बिल्कुल बिल्कुल। और उन्हें ये अपनी सेहत के लिए ही, उनकी सेहत को ध्यान में रखते हुए ही प्रशासन ने ये फैसला लिया है कि रास्ते में जो ये जंक फूड वगैरह है इसको बैन कर दिया जाएगा। तो इसके लिए हम जानते हैं कि उनके लिए कई सारे जो हेल्दी ऑप्शंस हैं वो रखे गए हैं। जो आपका तारिक हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
4: धन्यवाद।
3: जी श्रोताओं, ये थे हमारे संवाददाता पहलगाम से एस तारिक, जिन्होंने बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्ट जो है हमारे साथ शेयर करी है। आप बने रहिए हमारे साथ एफएम बालतल, एफएम पहलगाम, डीटीएच और न्यूज़ ऑन एयर की मोबाइल ऐप आराधना सर्विस पर भी हम उपलब्ध हैं।

चिरचिराजू दधर कर डमरू बाजी।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं। श्रोताओं, अगर आप बालतल के छोटे मार्ग से दर्शन के लिए जा रहे हैं, आप 103.7 मेगाहर्ट्ज पर हमें सुन सकते हैं। अगर आप पहलगाम के प्राचीन मार्ग से आगे बढ़ रहे हैं तो आप हमें सुन पा रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। इसके अलावा DTH न्यूज़ ऑन एयर की मोबाइल ऐप, आकाशवाणी आराधना चैनल पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारे पास लेटेस्ट अपडेट आया हुआ है और उसके अनुसार आज 4 बजे तक कुल 15,527 श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन प्राप्त कर लिए हैं, जिनमें पुरुषों की संख्या है 10,671, महिलाओं की संख्या है 4,455, 189 बालक हैं, 53 साधु हैं, 10 साध्वी हैं, 8 ट्रांसजेंडर हैं और सुरक्षा कर्मियों की जो संख्या है वो है 141। जी हाँ, जिससे कुल संख्या जो है वो बन रही है 15,527, जो कि जिन्होंने बाबा बर्फानी के भोलेनाथ के दर्शन जो हैं वो आज 4 बजे तक प्राप्त कर लिए हैं।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिएं।
0: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्टपेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्रीपेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करेगा।

0: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल, एफएम पहलगाम, डीटीएच और न्यूज़ ऑन एयर की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए। जी हमारे साथ श्रोताओं गांधरबल से हमारे संवाददाता रहीम रिजवान जुड़ चुके हैं, क्या कुछ अपडेट्स हैं उनके पास, आइए सुनते हैं। जी रिजवान,
1: ये तीर्थ श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा के बारे में हम अपने श्रोताओं को बालतल क्षेत्र के वातावरण एवं यात्रियों की गतिविधि के बारे में विस्तार से सूचना साझा करते हैं ताकि बालतल मुख्य मार्ग से पवित्र गुफा जाने वाले श्रद्धालुओं को सफर के दौरान कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। श्रोताओं हम साथ ही आपको यहाँ के मौसम की स्थिति के बारे में भी महत्वपूर्ण सूचना देते हैं क्योंकि बालतल मुख्य मार्ग एक पहाड़ी क्षेत्र है एवं आपको ऊंचे पर्वतों के बीच 14 किलोमीटर कठिन रास्ता तय करना पड़ता है। यहाँ का मौसम का मिजाज हर पल बदलता रहता है, लिहाजा रेनकोट साथ रखना ना भूलें, संयम एवं धीरज से सफर करें क्योंकि आपकी सुरक्षा प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण है। सुरक्षा के कड़े प्रबंध एवं व्यवस्थाएं देखकर हजारों की संख्या में श्रद्धालु आए रोजघाटी आगमन होकर पवित्र गुफा जाकर प्रार्थना करते हैं। इस बीच जहां आज 6457 श्रद्धालु बालतल बेस कैंप से पवित्र गुफा की ओर कड़े सुरक्षा के बीच प्रस्थान कर रहे हैं जिनमें 4713 पुरुष, 1471 महिलाएं, 101 बालक बालिका, 34 साधु, 15 साधिया, 6 तरह जनरल एवं 117 सुरक्षा कर्मी शामिल थे। वहीं यात्री शिवलिंगम का दर्शन करके सुरक्षित वापस बालतल पहुंचे। इन श्रद्धालु में 3590 पुरुष, 1288 महिलाएं, 82 बालक बालिका, 17 साधु, 9 साधिया एवं 28 सुरक्षा कर्मी शामिल है। शिवलिंगम का दर्शन करके बालतल बेस कैंप पहुंचने वाले श्रद्धालु ने आकाशवाणी को बताया कि इस बार जिला प्रशासन ने यात्रियों के लिए यात्रा रूट के हर पड़ाव पर उच्च स्तर की सुविधाएं उपलब्ध रखी हैं, जबकि सुरक्षा के भी कड़े प्रबंध किए गए हैं। इलाहाबाद अजीम सफाई सुथराई एवं शौचालय के भी खातिर का इंतजाम किए गए हैं। यात्रियों ने यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं से अपील की है कि वह यहाँ की सुंदरता बरकरार रखने के लिए स्वच्छता का खास ख्याल रखें, प्रशासन के द्वारा जारी की गई एडवाइजरी पर अमल करें ताकि उनकी ये तीर्थ यात्रा सुखद तरीके पर संपूर्ण हो सके। जी मैम।
0: जी रिजवान, आप से ये भी जानना चाहेंगे कि वहाँ का मौसम आज कैसा है।
1: मौसम के बारे में हम अपने श्रोताओं को ये बताना चाहते हैं कि यहाँ का मौसम पल पल बदलता रहता है, धूप खिली रहती है और बीच में वर्षा भी होती है, लेकिन मौसम बिल्कुल ही सुहाना है। और इस सुहाने मौसम के बीच, खुशगवार मौसम के बीच जो श्रद्धालु है वो पवित्र गुफा जाकर शिवलिंगम का दर्शन करके सुरक्षित वापस बालतल बेस कैंप पहुंचते हैं। और बालतल बेस कैंप पहुंचने के बाद रात्रि विश्राम के बाद इन यात्रियों को सुबह सवेरे कड़ी सुरक्षा के बीच अपने अपने मंजिल मकसूद की तरफ रवाना किया जाता है। इसके साथ साथ यहां दो ट्रांजिट कैंप्स भी श्रीनगर खारगिल राजमार्ग पर पड़ते हैं, एक तो ट्रांजिट कैंप शारीपोरा और दूसरा ट्रांजिट कैंप मणिगाम, जहाँ 5 बजे के बाद पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जाती है और इन यात्रियों को इन्ही ट्रांजिट कैंपों में रात भर रुकना पड़ता है। प्रशासन ने इन दोनों ट्रांजिट कैंपों में यात्रियों के लिए उच्च स्तर की सुविधाएं उपलब्ध रखी हैं और साथ ही जो ही शाम का वक्त होता है तो यात्री नाले सिंध का नजारा देखकर यहाँ की सुंदरता देखकर झूम उठते हैं और उन्हें मन करता है कि वो यहीं रुकें और बार बार यहाँ आए यहाँ की सुंदरता देखकर। उन्होंने आकाशवाणी को बताया कि अगर धरती पे कहीं स्वर्ग है वो तो यही कश्मीर में है क्योंकि वो बार बार यहाँ आना चाहते हैं और ऐसी यात्रा जो है वो करना चाहते हैं।
0: बिल्कुल सही बात है क्योंकि हमारे कश्मीर की खूबसूरती ही इतनी ज्यादा है कि कोई भी आए तो तारीफ करते थकता नहीं है। रिजवान ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि लंगरों में जो है खाना सब खाते हैं लेकिन उन्हें बनाने वालों की मेहनत जो है वो कहीं ना कहीं कोई देखता नहीं है, तो मणिगाम ट्रांजिट कैंप के लंगर्स में जो शेफ्स हैं या वॉलंटियर्स हैं हम जानते हैं कि वो सुबह 2 बजे से उठकर हजारों लोगों के लिए खाना तैयार करते हैं। इस हेवी प्रोडक्शन और किचन मैनेजमेंट के पीछे जो थकन जो काम वो करते हैं, हम चाहते हैं कि आप उस पर कुछ रोशनी डालें।
1: वो चाहते हैं कि मैंने खुद भी इसका मुआयना किया है, चाहे बालतल में जो लंगर लगे हुए हैं या मणिगाम में जो लंगर लगाए गए हैं या शादीपोरा में, हैरान हुआ ये देख के कि वो 2 बजे रात उठते हैं, जागते हैं इस नींद से। आज गर्मी है, काफी शदत की गर्मी है, और
0: जी
1: इस बीच वो 2 बजे रात उठते हैं और जो अपनी सेवा है वो शुरू करते हैं 2 बजे रात से, क्योंकि 4 बजे यात्रियों को धूमिल खाडूल गेट पहुंचना होता है, और 4 बजे से पहले 3 बजे वो वहां पर पहुंचते हैं और इंतजार करते हैं कतारों में कि कब उन्हें पवित्र गुफा जाने की अनुमति दी जाती जाएगी। तो इस दौरान वो 4 बजे से पहले ही भोजन करके गुफा की ओर रवाना हो रहे हैं।
0: जी
1: तो अब ये जो सेवादार हमारे हैं, इन्होंने जो भी अधिकारी इसमें लगाए हैं, इस काम में लगाए हैं, हमने हमने उनके साथ भी बात की, तो उन्होंने आकाशवाणी को बताया कि सेवा करना ही हमारा धर्म है, और हम
0: जी
1: अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं कि हम बाबा भोलेनाथ के दर्शन के ये देश के विभिन्न भागों से जो श्रद्धालु आते हैं उनकी सेवा करते हैं। आपको ये मालूम होगा कि उनके लिए गर्म पानी भी रखा जाता है इन भंडारों में, जो
0: जी
1: भी लंगर लगाए गए हैं। तो क्योंकि आप जानते हैं कि सुबह सवेरे काफी ठंड होती है भारत के पूरे क्षेत्र में, श्रद्धालु जो है उनका पानी बिल्कुल ठंडा होता है, वो ठंडा पानी को इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, और खासकर हमारे बहुत सारे बुजुर्ग हैं, हैंडीकैप लोग हमने देखे हैं जो यात्रा के लिए दे हैं, उनके लिए इतनी सेवा करना ये कोई मामूली बात नहीं है,
0: नहीं है
1: बल्कि ये माया से बाहर है। जो ये काम अंजाम देते हैं वो इसलिए देते हैं कि उनकी मन को शांति मिलेगी और बाबा बर्फानी का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो।
0: ज़रूर ज़रूर। और रिजवान, ये भी हम जानते हैं कि इस बार जंक फूड और तली हुई चीज़ों पर बैन है, तो क्या लंगर वाले लोकल जो कश्मीरी खाने हैं, साग वगैरह है, तो उनको मेन्यू में शामिल कर रहे हैं?
1: जी बिल्कुल, ये जो जंक फूड है वगैरह ये अलाउ नहीं किए जाते हैं, और इसके लिए बहुत सारी एजेंसियां भी काम करती हैं जो सफाई सुथराई का खास ख्याल रखते हैं वहां पे, तो बिल्कुल इस पे बैन लगी हुई है, लेकिन लंगर वाले जो है इस पे वो अलाउ नहीं करते हैं, बल्कि उनकी जूस वगैरह जो है या वाटर बोटल्स हैं वो फ्री यात्रियों को दी जाती है लंगर्स में, और बहुत सारे जो यहाँ की सब्जियां हैं, यहाँ के सालन हैं, उन्हें अपने इसमें शामिल किया जाता है। खासकर अगर हम मिक्सड वेज की बात करेंगे, वो भी भोजन के लिए वो तैयार करते हैं, तो हमने वहां पे देखा है कि बहुत सारी ऐसी सब्जियां जो है कश्मीर की सब्जियां जो है, और इसके साथ साथ बाहर हमने देखे हैं कि खीरा वगैरह और दीगर जो हमारी सब मेवे हैं वो भी वहां पे अच्छे तरीके से बिकते हैं, बहुत सारे स्टॉल्स लगाए हुए हैं हमारे यहाँ के लोग, जिनको बाजार तो रजिस्ट्रेशन मिल गया है लेबर डिपार्टमेंट से और दीगर डिपार्टमेंट से, दीगर भी विभागों से उन्हें बाजार तो रजिस्ट्रेशन कार्ड्स मिले हैं, तो उन्होंने जगह जगह छोटे छोटे स्टॉल्स लगाए हैं जहाँ खीरा वगैरह उनको बेच देते हैं, ताकि शिद्दत की गर्मी से जो है उसे उनको छुटकारा मिले। तो यहाँ के लंगर वाले जो है वो भी यहाँ की सब्जियां वगैरह जो है

वो दीगर डिपार्टमेंट से, दीगर भी विभागों से उन्हें बाजार तो रजिस्ट्रेशन कार्ड मिले हैं, तो उन्होंने जगह जगह छोटे छोटे स्टॉल्स लगाए हैं जहाँ खीरा वगैरह उनको बेच देते हैं ताकि भीतर की गर्मी से जो है उसे उनको छुटकारा मिले। तो यहाँ के लंगर वाले जो है वो भी यहाँ की सब्जियां वगैरह जो है उनमें शामिल करते हैं, और बहुत सारी छोटी बड़ी वाहनों में हमने देखा है रास्ते में, जब भी हम बालतल की तरफ जाते हैं तो बहुत सारी गाड़ियां हमारे आगे पीछे होती है।

0: जीरो प्लास्टिक की एक बड़ी कैंपेन शुरू की है। जी रिजवान, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि गांधरबल प्रशासन ने इस बार नो ट्रेस लेफ्ट यानी कि कचरा ना छोड़ने और जीरो प्लास्टिक की एक बड़ी कैंपेन शुरू की है, तो मनीगाम कैंप और रास्ते के लंगर्स में इसका कितना असर दिख रहा है? क्या जो हमारे सिर्फ सफाई कर्मचारी है वो ग्राउंड पर इसको कैसे मैनेज कर रहे हैं?
1: मैंने पहले भी आपको बताया है कि अगर हम रूरल डेवलपमेंट की बात करेंगे या जल शक्ति महकमे की बात करेंगे या इसके अन्य विभाग जो है उनकी बात करेंगे, उन्होंने बाजबता तौर इसको टेंडर आउट किया है, आउटसोर्सिंग किया है, और जहाँ हजारों की तादाद में हमारे जो अधिकारी हैं या मुख्तलिफ अजला से, जिसमें मैंने कुपवाड़ा के लोग देखे हैं, बारामूला के लोग देखे हैं और दीगर अजला के लोग देखे हैं, नौजवान देखे हैं जिनके पास बाजाबता तौर एक यूनिफॉर्म लगी हुई है और वो ये ढूंढ रहे हैं, क्योंकि मैं भी खुद उनके साथ परसों था तो वो खुद ढूंढ रहे हैं कि कहीं बिस्किट का या कोई ऐसा कचरा या कुछ देखने को मिले, और इसके लिए उन्होंने बाजाबता तौर डस्टबिन भी जगह जगह इंस्टॉल किए हैं, नस्ब किए हैं, तो डस्टबिन से फौरन वो कचरा जो है वो निकाला जाता है। बाद में ट्रैक्टर्स लगे हुए हैं वहां पे, उन ट्रैक्टर्स के जरिए उनको ठिकाने के लिए लगाया जाता है उस जगह पर जहाँ ये वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट उन्होंने बाजाबता दो जगह पर इन्होंने तैनात किया है, एक तो बालथल में है और एक सोनमर्ग में है, और इन दोनों मकाम पर जो कचरा है उनको पहुंचाया जाता है और वेस्ट मैनेजमेंट जो प्लांट लगाए गए हैं उनसे वो बिल्कुल डिकम्पोज किया जाता है बाजाबता तौर। तो बहुत सारे अधिकारी वहां पे कुछ बंद रखे गए हैं और कहीं भी अगर हम कचरे की बात करेंगे तो कहीं नजर नहीं आ रहा है, बिल्कुल साफ सुथरा पूरा बालथल का क्षेत्र आज नजर आ रहा है, इसीलिए उसकी सुंदरता देखकर यहाँ आने वाले श्रद्धालु जो हैं वो काफी प्रसन्न हुए हैं और संतुष्ट होकर वो वहां से जाते हैं और इसकी तारीफ जो है तारीफ वो बार बार करते हैं।
0: जी गांधरबल से ये ग्राउंड जीरो की ताज़ा तस्वीर हम तक पहुंचाने के लिए रिजवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद आपका।
0: जी श्रोताओं, ये थे हमारे संवाददाता गांधरबल से बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्ट के साथ। अमरनाथ यात्रा सिर्फ एक सफर नहीं, इंसानियत, दोस्ती और विश्वास की एक अनोखी दास्तान है। सुनते रहिए अमरनाथ यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण जो आप सुन पा रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, DTH और न्यूज़ ऑन एयर की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए।

0: यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिएं।
0: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्टपेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्रीपेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करेगा।

0: पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिएं।
0: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्टपेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्रीपेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करेगा। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: उन स्थानों पर ना रुकें जो चेतावनी नोटिस द्वारा चिन्हित हैं। चप्पल का उपयोग ना करें, क्योंकि पवित्र गुफा के मार्ग पर खड़ी चढ़ाई है। केवल फीते वाले ट्रैकिंग शूज ही पहनें। रास्ते में शॉर्टकट का प्रयास ना करें, क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है।
0: अपनी पूरी यात्रा के दौरान ऐसा कुछ भी ना करें जिससे यात्रा क्षेत्र में प्रदूषण हो या पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में प्लास्टिक के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध है और ये कानून के तहत दंडनीय है। वेस्ट मटेरियल को नजदीक के कूड़ेदान में ही फेंकें। सभी प्रकार के जैविक कचरे को हरे रंग के कूड़ेदान में ही डालना चाहिए।
2: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल 103.7, एफएम पहलगाम 100.1, डीटीएच और न्यूज ऑन एयर की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए। चलिए श्रोताओं, सीधे चलते हैं श्रीनगर के पांथा चौक ट्रांजिट कैंप, जहां से हमारे संवाददाता इमरान नायकू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी इमरान
3: जी, बिल्कुल, श्रीनगर के इस पांथा चौक ट्रांजिट कैंप से आज अमरनाथ जी यात्रियों को पवित्र गुफा के दर्शन के लिए रवाना किया गया था सुबह, और दो अलग अलग जत्थे यहाँ से रवाना किए गए थे, और आज यहाँ दोपहर के बाद यहाँ पर अमरनाथ जी यात्री पहुंच रहे हैं और वो यहाँ पे नाइट स्टे करेंगे। और इस सिलसिले में यहाँ अमरनाथ जी यात्रियों के लिए हर तरह की सुविधाएं जो पहले दिन से हम बता रहे हैं कि वो उनके लिए रखी गई है, जिसमें हम देखें कि एसेंशियल सर्विसेज हो, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी हो, इलेक्ट्रिसिटी हो या टेलीकॉम कनेक्टिविटी हो, एकोमोडेशन, फूड, हेल्थ केयर, इमरजेंसी सर्विसेज और जो सिक्योरिटी है, वो सारी चीजें अमरनाथ जी यात्रियों के लिए इस ट्रांजिट कैब में पहले से ही गवर्नमेंट ने रखी थी। और इसके अलावा यहाँ यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर्स भी एस्टेब्लिश किए गए हैं और जो यात्री यहाँ पे पहुंच रहे हैं उन्हें ये सारी सुविधाएं जो है गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही है। और कल सुबह ये जो आज यात्री जहाँ पहुंचे हैं उन्हें पवित्र गुफा के दर्शन के लिए रवाना किया जाएगा। और इसके अलावा अच्छी बात यह है कि जैसे कि आज अमरनाथ जी यात्री के 15 दिन हो रहे हैं, 15 डेज हो रहे हैं, तो इसमें भी हमने देखा कि जैसे आज एलजी साहब ने इसका ऐलान भी किया है कि 3.5 लाख से ज्यादा अमरनाथ जी यात्रियों ने अभी तक बाबा भोलेनाथ का दर्शन किया है, और ये सबसे अच्छी बात है। और ये जो अभी 3.5 लाख से ज्यादा यात्रियों ने पवित्र गुफा का दर्शन किया, तो इसमें ये यात्रा अभी तक काफी अच्छे तरीके से या पीसफुल मैनर में जो है हो रही है। और इस सिलसिले में ये भी डायरेक्शंस पास की गई है कि यात्रियों का जो फीडबैक वो लिया जाए। और इसके अलावा जितने भी यहाँ पर यात्रियों को फैसिलिटीज दी जा रही है, उन फैसिलिटीज को लेके यात्रियों से उनका फीडबैक हासिल किया जाए, वो तमाम डिपार्टमेंट्स को कहा गया है, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, आर्मी, सिक्योरिटी फोर्सेस, श्राइन बोर्ड और जितने भी यहाँ स्टेक होल्डर्स हैं। सो हम देख रहे हैं कि खास

0: खुश है, और यात्री जो है गवर्नमेंट का या यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का काफी जो है शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। और इसके अलावा जैसे कि हम देख रहे हैं कि क्लीननेस ड्राइव और जो बाकी रूट्स पर या यात्रा कैंप्स में हो रही है, यहाँ इस यात्रा यात्री भवन में या इस ट्रांजिट कैंप में भी हो रही है, और इस यात्रा को वेस्ट फ्री श्री अमरनाथ जी यात्रा जो है वो किया जा रहा है श्रीनगर में भी। इसलिए हम देख रहे हैं कि यहाँ सैनिटेशन वर्कर्स अराउंड द क्लॉक यहाँ पे अपनी जो है सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कुल मिला के हम देख रहे हैं कि जहाँ एक तरफ गवर्नमेंट की तरफ से यात्रियों के लिए हर तरह की सुविधाएं रखी गई है, वहीं यात्रियों के लिए एक रिड्रेसल मैकेनिज्म भी है ताकि अगर किसी यात्री की कोई प्रॉब्लम हो तो उसे इमीडिएटली बेसिस पर जो है एड्रेस किया जाता है, उसको सॉल्व किया जाता है। उसकी डायरेक्शन आज भी और इससे पहले भी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जो है ऑफिशियल्स को दी थी, और आज दोबारा से उसका उन्होंने जिक्र किया है। और खासकर यहाँ श्रीनगर में इस यात्रा ट्रांजिट कैंप के अंदर हम देख रहे हैं कि यह एक तो सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, और दूसरा ये कि किसी तरह से यात्रियों को कोई दिक्कत या उनको किसी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि अमरनाथ जी यात्री जो है वो काउंटर्स पे जा रहे हैं, और एज ऑफ नाउ या अभी तक जो है अमरनाथ जी यात्री कोई शिकायत नहीं कर रहे। और इसके अलावा छड़ी मुबारक जो श्री अमरनाथ जी यात्री के सिलसिले में उसकी भी आज बाजाब्ता तौर पर शेड्यूल जारी किया गया है, और छड़ी मुबारक श्री अमरनाथ जी यात्री के जो महादीपेंद्र गिरी जी हैं उन्होंने इस साल की छड़ी मुबारक का मुकम्मल प्रोग्राम जारी किया है, और उन्होंने कहा है कि 29 जुलाई को पहलगाम में पहली जो है रिवायती शुरुआत होगी, जहां भूमि पूजन, नौग्रह पूजन और दुहा पूजन, दुहाजा रोहन की रस्मात अदा की जाएगी। इसके बाद 12 अगस्त को छड़ी मुबारक को शंकर आचार्य मंदिर श्रीनगर और 13 अगस्त को शारिका भवन मंदिर श्रीनगर ले जाया जाएगा। इसके अलावा शेड्यूल के मुताबिक 15 अगस्त को छड़ी मुबारक को दशनमी अखाड़ा श्रीनगर में और छड़ी स्थापना की रस्म अदा की जाएगी, और इसके बाद 17 अगस्त को नाग पंचमी के मौके पर जो छड़ी मुबारक है उसकी पूजन होगी, और 22 अगस्त को श्रीनगर से छड़ी मुबारक जो है वो इस पवित्र गुफा के लिए रवाना की जाएगी। 22 और 23 अगस्त पहलगाम में छड़ी मुबारक जो है को रखा जाएगा। 24 अगस्त को चंदनवाड़ी, 25 अगस्त को शेषनाग, 26 और 27 अगस्त को पंचतरणी में रखा जाएगा, और 28 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा के मौके पर पवित्र अमरनाथ गुफा में छड़ी मुबारक के साथ खुसूसी पूजा पाठ की जाएगी। और दीपेंद्र गिरी जी ने जम्मू कश्मीर हुकूमत से यात्रा के दौरान सारे इंतजाम और दीगर जितनी भी बेसिक फैसिलिटीज है उसके लिए अपील की है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि वो सारी चीजें पहले से ही गवर्नमेंट ने यहाँ पे इंश्योर की रखी है।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया इमरान, आपने छड़ी मुबारक का जो शेड्यूल है वो हमारे जो यात्री हैं उनके साथ शेयर कर लिया है। यहाँ पर हम एक और बात आपने कही कि इस बार प्रशासन ने श्रीनगर कैंप में या हम कहें कि हर जगह ज़ीरो वेस्ट हब जो है वो बनाने का दावा किया है, तो यहाँ पर हम जानना चाहते हैं कि जैसे कि प्लास्टिक पर पूरी तरीके से बैन है, तो यात्रियों को स्टील या जो बायोडिग्रेडेबल पेपर कप्स है वो दिए जा रहे हैं, ग्राउंड ज़ीरो पर इस ग्रीन पॉलिसी का असर कैसा दिख रहा है?
0: देखिए अगर आप देखेंगे पिछले कई सालों से यात्रा को वेस्ट फ्री यात्रा के तौर पर हम दिखाए जो है सामने देख रहे हैं, और इसमें प्रशासन बड़ी अहमियत का या बड़ा अहम रोल प्ले कर रही है, और जिसमें यात्रियों से भी कहा जा रहा है कि वो इसमें योगदान दे, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि जो जीरो लैंडफिल या प्लास्टिक फ्री पिलग्रिमेज जो है वो इस यात्रा में हमें दिखाई दे रहा है, और वो चाहे श्रीनगर हो, वो चाहे अमरनाथ जी यात्रा के जितने भी रूट्स हो, या जहां जहां पर ये ट्रांजिट कैंप्स कायम किए गए हैं वहाँ गवर्नमेंट की तरफ से वो डस्टबिन लगाए गए हैं, और उन डस्टबिन में यात्री जो है उन जितना भी वेस्टेज है उसमें डाल रहे हैं, और जो पहले से कहा गया है या बाकी जो गवर्नमेंट की तरफ से जो हमारा सैनिटेशन डिपार्टमेंट है, हमारा रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, या श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, यहाँ पे तो हर एक डिपार्टमेंट का अपना अपना एक अपने अपने डस्टबिन जो है अपनी जगहों पर वो लगाए गए हैं, और ताकि इस यात्रा को जो है जीरो लैंडफिल पिलग्रिमेज या जीरो वेस्ट पिलग्रिमेज जो है के तौर पर जो है देखा जाए, और उसी का असर जो है हम देख रहे हैं कि टन्स में यहाँ वेस्ट हर साल जनरेट होता है, लेकिन

0: ये जो वेस्ट है इसको गवर्नमेंट प्रॉपरली और साइंटिफिक तरीके से डिस्पोज ऑफ कर रही है, और इसके लिए जो डस्टबिन लगाए गए हैं उन डस्टबिन को बाद में डंपिंग साइट्स पर गवर्नमेंट ले या लैंड साइट्स जो है वहां तक ले जा रही है। और कुछ यहाँ पे प्राइवेट एनजीओज भी है जो
1: जी
0: हर साल इसमें अपनी जो है सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे स्वाहा है वगैरह है, तो इस साल भी वो खिदमात अंजाम दे रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि श्रीनगर हो या बाकी जितने भी इस यात्रा में ट्रांजिट कैंप से, वहां पे इस तरीके के डस्टबिन लगाए गए हैं ताकि जितना भी हमारा वेस्ट है, जितना भी हमारा जो भी इस यात्रा में वेस्ट वगैरह निकलता है उसको सही तरीके से और साइंटिफिक तरीके से कहीं पे डिस्पोज ऑफ किया
1: डिस्पोज
0: जाए, और
1: ऑफ
0: उसके
1: किया
0: लिए
1: जाए।
0: गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज है वो भी काम कर रहे हैं।
1: जी इमरान, हम ये भी जानते हैं कि अमरनाथ यात्रा जो है वो हमेशा से कश्मीरियत और भाईचारे की मिसाल रही है। पांथाचोक कैंप के लंगर्स जो चलाने वाले लोग हैं वो हम जानते हैं कि देश के अलग अलग कोनों से आते हैं, पंजाब से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, और उनकी मदद जो है लोकल कश्मीरी मुस्लिम यूथ कर रहे हैं। इस मल्टीफेथ किचन कोऑर्डिनेशन की कोई लाइव या दिलचस्प कहानी आप हमारे लिसनर्स के साथ अगर शेयर करेंगे तो बहुत ही खूब होगा, बहुत ही अच्छी बात होगी।
0: देखिए, कई सालों से हम देख रहे हैं कि जो अमरनाथ जी यात्रा है ये सिर्फ मजहब के तौर पर हम इसको नहीं देख रहे हैं कि हमारे जो यात्री भाई है देश के अलग अलग हिस्सों से कोनों से आते हैं और यहाँ पे यात्रा करते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं।
1: जी
0: जैसे मैंने पहले 2-3 दिन अपने इस अपडेट में ये कहा था कि ये यात्रा बहुत कुछ हमें सिखाती है। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यह है कि रिलीजन या मजहब तो अपनी जगह पे एक रस्म तो अदा की जाती है, लेकिन इसके साथ साथ देश के मुख्तलिफ हिस्सों से, देश के मुख्तलिफ कोनों में जो एक कल्चर है वो किस तरह से हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, यात्रा से बढ़कर शायद कोई दूसरी जगह या कोई दूसरा कहीं हमें जो है नहीं मिल जाता है कि
1: जी
0: जहां हमें पता चले कि यूपी का कल्चर कैसा है, उत्तराखंड का कल्चर कैसा
1: जी
0: है, मध्य प्रदेश का कैसा है, या महाराष्ट्र का कैसा है, या बाकी स्टेट्स या बाकी यूटीज का कैसा है। और इस जब यात्री यहाँ पहुंचते हैं तो यहाँ के लोकल्स जब वो शॉपकीपर्स के पास जाते हैं या लंगर्स में जो लोग काम करते हैं, इवन के गवर्नमेंट के जो अधिकारी या लोग जो है एम्प्लॉय जो इन यहाँ पे काम कर रहे हैं ट्रांसिट कैंप्स में, तो ऑब्वियसली ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ शेयर, जिसको हम कहते हैं कल्चरल इंटीग्रेशन, तो
1: जी
0: वो कल्चरल इंटीग्रेशन जो है वो हमें इस यात्रा में
1: देखने
0: देखने को
1: को
0: मिलती
1: मिलती
0: है,
1: है,
0: या
1: बिल्कुल
0: वो कल्चर, इसके अलावा जो जिसको हम कहते हैं कि लोकल जो हमारा जो हैंडीक्राफ्ट है, हैंडलूम है, तो
1: जी
0: यहाँ कश्मीर का हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम क्योंकि आप भी जानते हैं पूरी दुनिया में फेमस है, तो मुल्क में तो है ही है। तो जब बहुत सारे ऐसे यात्री फर्स्ट टाइम कश्मीर का यहाँ यात्रा के लिए आते हैं तो ये ट्रांजिट कैंप्स में या बाहर जब वो निकलते हैं दुकानों पे या स्टॉल्स पे, तो ये हमारा लोकल जो प्रोडक्ट है यहाँ देखकर और वो उसे खरीदने का या एक्सपीरियंस करने का भी उनको मौका मिलता है। तो कहने का मतलब यह है कि ये यात्रा सिर्फ मजहब तक महदूद नहीं है बल्कि हमें कल्चर की जो बाउंडिंग है, जो इंटीग्रेशन है वो भी सिखाती है। और दूसरा ये कि वो मोहब्बत, वो प्यार, वो भाईचारा जो है वो ये सारी अलामत जो है ये हमें इस अमरनाथ जी यात्रा में दिखाई देती है। वो आप चाहे श्रीनगर के ट्रांजिट कैंप में आए और देखे, वो चाहे किसी भी ट्रांजिट कैंप में जाए या गुफा पे जाए आप, तो वहां पे ये सारी चीजें आपको निकली। आप देखिए कि जो होने वाले हैं वो किस तरीके से अमरनाथ जी यात्रियों को अपने कंधों पे ले जाते हैं,
1: जी बिल्कुल
0: जो कोई बीमार खुदा ना खास्ता होता है या किसी और तकलीफ में या किसी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो किस तरह से उनके शाना बशाना वो खड़े हो जाते हैं। ये सारी चीजें हमें शायद मुझे लगता है कि यात्रा से ज्यादा कहीं और देखने को नहीं मिलेगी या मिलती है, तो इसीलिए यात्री जो है कश्मीर आके इस यहाँ की मेहमान नवाजी, यहाँ की हॉस्पिटलिटी, यहाँ के लोगों के यहाँ के लोगों का जो बिहेवियर है या लव है या जो कम्युनल हार्मनी जिसको हम कहते हैं वो यहाँ कश्मीर में ही इस अमरनाथ जी यात्रा में हमें देखने को मिलती है, और उसकी जिंदा मिसाल या आप ट्रांजिट कैंप्स में जाए या आप यात्रा के दोनों रूट्स पे जाए तो ये सारी चीजें वहां आपको देखने को मिलती है। और जिस तरह से हम देखते हैं कि वेव ऑफ कैसे किया जाता है कि जब यात्री यहाँ पहुंचते हैं, सो ये यात्री बेसिक यात्रा जो है बेसिकली यही हमें सिखाती है कि देश के कोने कोने आप कहां से भी हो लेकिन एक आप इस देश के रहने वाले नागरिक हैं, लेकिन भाई भाई हैं आप, मजहब आपका अपना अपनी जगह पे है लेकिन प्यार मोहब्बत और वो भाईचारा अलग ही इस यात्रा से बेहतर कहीं हमें दिखाई नहीं देता।
1: सही बात है इमरान, और कश्मीर जो है अपनी कश्मीरियत, अपनी खूबसूरती के लिए माना जाता है, और उससे ज़्यादा अपनी इंसानियत के लिए माना जाता है, और ये बहुत गर्व की बात है कि हमारे लोकल्स हर बार ये चीज़ साबित कर देते हैं, और हमारे कश्मीर का नाम जो है हर पूरे देश में, पूरी दुनिया में रोशन कर देते हैं। इमरान, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे तक ग्राउंड रिपोर्ट पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: शुक्रिया।
1: शुक्रिया आपका। जी श्रोताओं, ये थे हमारे संवाददाता श्रीनगर से इमरान, और यहाँ पर आपको बता दें कि आप सुन रहे हैं अमरनाथ यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण FM बालतल, FM पहलगाम, DTH और न्यूज़ ऑन एयर की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए।

0: 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं। आपके साथ कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस जो है वो शेयर करना चाहेंगे। आपको बता दें कि सुरक्षा के लिहाज से हर यात्री के लिए RFID टैग पहनना ज़रूरी है, इसके बिना एंट्री नहीं मिलेगी। इस साल यात्रा को देश की पहली कचरा मुक्त यात्रा बनाने का टारगेट है। रास्ते में वाटर ATM लगाए गए हैं और जी हाँ, रास्ते में वाटर ATM जो हैं वो लगाए गए हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। यात्रियों की सुरक्षा के लिए पहली बार AI ड्रोन और हाईटेक कैमरों से पूरे रूट की निगरानी हो रही है। ऊंची पहाड़ी रास्तों की वजह से सभी के पास ऑथोराइज्ड डॉक्टर के साइंड हेल्थ सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखिएगा। और आप जानते हैं कि बालतल जो है एक छोटा रूट है, छोटा मार्ग है, 14 किलोमीटर पर सीधी चढ़ाई वाला रास्ता है, और पहलगाम का जो मार्ग है ये पारंपरिक और लंबा रास्ता है जो थोड़ा आसान माना जाता है। जी हाँ, ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े साथ रखें, कैश साथ रखें क्योंकि आगे ATM नहीं है, और कॉलिंग के लिए BSNL का सिम सबसे सही चलता है। तो अगर आप हेलीकॉप्टर और जो है उसकी सर्विस लेना चाहते हैं तो आप बुकिंग सिर्फ SASB की ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप से ही करें, तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। हम आगे बढ़ते हैं आपके लिए, जो है हम अब आरती सुनेंगे। हम आप बने रहिएगा हमारे साथ FM पहलगाम, FM बालतल के संग।
1: कल से गुप्त नवरात्रे प्रारंभ हो चुके हैं, तो आप सभी भक्तजन दोनों हाथों से माँ दुर्गा का ध्यान करें।

गुप्त नवरात्रे जो हैं माता रानी के विशेष दिन माने जाते हैं। इनमें की गई पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। माँ दुर्गा के साथ साथ यदि भक्तजन दश महाविद्याओं का पूजन करते हैं, पाठ करते हैं, जप करते हैं, साधना करते हैं, उपासना करते हैं, तो माता रानी की विशेष कृपा मानी जाती है। इन दिनों में की गई पूजा को गुप्त ही रखना चाहिए और जो भक्तजनों की मनोकामनाएं होती हैं उनको भी गुप्त ही रखना चाहिए। माँ जगजननी जो है, माता दुर्गा जो है, वो असंभव कार्य को भी संभव करती हैं। माँ जो है वो समस्त जगत का पालन पोषण करती हैं, समस्त भक्तों का उद्धार करती हैं, अमंगलों का मंगल करती हैं और अखंड सौभाग्य का सुख प्रदान करती हैं। माता रानी विशेष कृपा करती हैं। तो आप सभी भक्तजन इन दिनों में माता रानी की पूजा करें, पाठ करें, उपासना करें, तो माता रानी के साथ साथ भोले बाबा की भी विशेष कृपा मानी जाती है। इसी के साथ आज सायंकाल की आरती में हम सभी जन प्रवेश करेंगे और सभी विद्वान जन भोले बाबा की पवित्र आरती प्रारंभ करेंगे। बोलिए।

0: सभी भक्तजन भोले बाबा के चरणों में बैठकर भोले बाबा की पवित्र आरती श्रवण कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। भोले बाबा जो हैं बड़े ही भोले हैं, भोले बाबा भजनों से बड़े ही प्रसन्न होते हैं, तो सभी हंसते हुए मुस्कुराते हुए दोनों हाथों से ताली का वादन करते हुए भोले बाबा के सुंदर भजन का ध्यान करेंगे। बोलिए शंकर
1: भगवान के जय।

ला कंठ योर बागंबर दारे नीला कंठ योर बागंबर दारे नीला कंठ

0: अभिषेक वस्तु अस्तु अमृताभिषेक। बोलिए शंकर भगवान के
1: जय,
0: धर्म के
1: जय हो,
0: अधर्म का
1: विनाश हो,
0: प्राणियों में
1: भाव न हो,
0: विश्व का
1: कल्याण हो,
0: गौ माता की
1: जय हो,
0: मात पिता की
1: जय हो,
0: गुरु जनों की
1: जय हो,
0: सभी संतों की
1: जय हो,
0: सभी भक्तों की
1: जय हो,
0: सत्य सनातन धर्म की
1: जय हो,
0: आज के आनंद की
1: जय हो,
0: भारत माता की
1: जय हो,
0: शंकर भगवान की
1: जय हो,
0: शंकर भगवान के परिवार की
1: जय हो,
0: शंकर भगवान के गणों की
1: जय हो,
0: शंकर भगवान के भक्तों की
1: जय हो,
0: अमरनाथ स्वामी की
1: जय हो,
0: बाबा बर्फानी की
1: जय हो,
0: नमः पार्वती पते हर हर हर महादेव। शिव शंभो निरावलंबस्य
1: ममावलंबं
0: विपत्ताशेष विपत्तं ब्रह्मदेय पापाचलपाल प्रवर्तताम् वाच सदैव ब्रह्म महादेव।

0: सभी भक्तजन आरती आपको गेट के बाहर मिलेगी। बोलिए शंकर भगवान के।
1: शाम के 6 बज रहे हैं। ये विशेष प्रसारण आप यात्रा 2026 के सिलसिले में आकाशवाणी के FM बालतल से सुन रहे थे, FM 103.7 MHz पर, FM पहलगाम 100.1 MHz, DTH की आराधना सर्विस, मोबाइल ऐप, न्यूज ऑन एयर की आराधना चैनल और प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर। आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा 2026 के इस विशेष प्रसारण में हमारे साथ थे हमारे सहायक इंजीनियर्स नसीर अहमद एहंगर और राजकुमार, और इनके साथ है शौकत अहमद खान। मैं आपकी उद्घोषक फरजाना और इस विशेष प्रसारण के प्रस्तुतकर्ता श्री वसीम फारूक। इसके साथ ही हमारी आज की ये सभा यहीं पे समाप्त होती है। प्रातः 7 बजे अमरनाथ यात्रा का विशेष प्रसारण लिए आपकी खिदमत में दोबारा उपस्थित होंगे। जब

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

हाथ जोर राजा कहें परम पूज्य मुनिनाथ, भयल आगमन आप कै दुनिया भयल सनाथ। हमसे ज्यादा आप कै हम सब पर अधिकार, ई हमार सौभाग्य हो जागल भाग हमार। इतना कहकर राजा दशरथ अपने पुत्रों को मुनि के साथ विदा करते हैं।

अब धनुष यज्ञ का समाचार सुनते ही मुनि विश्वामित्र राम लक्ष्मण को साथ ले जनकपुर की ओर चल देते हैं।

इधर राम लक्ष्मण जनकपुर की गलियों में घूम रहे हैं। जनकपुर की स्त्रियां उन्हें अपलक निहारते हुए उनके सौंदर्य की आपस में चर्चा इस तरह से कर रही हैं।

गौरी पूजन के लिए सीता सखियों के साथ जाती हैं और फूलमाला चढ़ाते हुए माता के चरणों को धोती हैं, पोछती हैं, साथ ही शीश नवाते हुए अपनी बात कहती हैं।

प्रस्तुत है धनुष यज्ञ का कार्यक्रम, जहां बड़े बड़े योद्धा, राजा, सूर्यवीर, बाणासुर जैसे योद्धा धनुष को तोड़ने के लिए अपने अपने बल का प्रयोग करते हैं। उसी दरबार में श्री राम लक्ष्मण अपने गुरु के साथ उपस्थित हैं। बारी बारी से सूर्यवीरों के प्रयास करने पर भी धनुष नहीं उठा। तत्पश्चात भगवान श्री राम अपने गुरु का चरण छूते हुए प्रत्यंचा चढ़ाते हैं। धनुष दो टूक हो जाता है। धनुष टूटने की आवाज सुनते ही परशुराम जी की तपस्या भंग होती है और उठकर जनक की सभा में पहुंचते हैं। परशुराम जी को गुस्से में देख भगवान राम जी हाथ जोड़ अपनी सारी बातें कुछ इस प्रकार बताते हैं।

नमस्ते जगत तारिणी त्राही दुर्गे। हे शरण आपवामां कुशल कल्याणमयी दयामयी जगद्व्यापिके विश्व यमनु स्वरूप छे एवा जगद वंद्य चरणारविंद थी सुशोभित हे माँ दुर्गा, अमारू आपत्तियों माथी रक्षण करो, रक्षण करो।

सिंहों ऊपर विराजिला, मस्तकों पर चंद्र धारण करनार, लीलम मरकट लीलम मणि जेवा शोभता, शंख चक्र धनुष्य अने बाणने पोतानी चार भुजाओथी धारण करता, त्रण नेत्रोथी सुशोभित मधुर शब्द करती घुघरियो वाला कंदोरा थी, अने रणकार करता झांझर थी शोभता, रत्न थी उज्ज्वल कुंडल वाला श्री दुर्गा माता, हमारा दारिद्र्य अने दुःखनो नाश करो।

युग पुरुष संत शिरोमणि कबीर दास जी ने कहा है, हम एक से ही अनेक हुए हैं और फिर एक ही हो जाएंगे। और जब हम सभी उस एक परमात्मा को जान लेंगे, तब हम सब भी उस एक में ही मिल जाएंगे।

और इस संसार सागर से तारने वाले सिर्फ एक है, सदगुरु साहिब। जो ये सत्य जान जाते हैं वे भव सागर से तर जाते हैं।

जासुकों मुनि वर रटे सुर नर करें विलाप सो सुख सहजे पाइये सदगुरु संग दिया। एक जीव है एक नाम है एक है साहिब प्यार।

मन मक्का दिल द्वारी का काया काशी जान दस द्वारे का तेहरा तामे ज्योति बिछान ईश्वर अंश जीव अविनाशी इसी में काबा इसी में काशी।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

एक सच्चा हरि भक्त जीवन भर ईश्वर दर्शन की आस लिए, हरि मिलन की प्यास लिए पल पल तड़पता है, तरसता है कि उस पर भी हरि कृपा कर दें। भक्तों का तारनहार, जगत का पालनहार हर युग में अवतार लेता है, कभी अवधपति राम तो कभी गोकुल का श्याम बनकर। बाल कृष्ण की एक झलक पाने के लिए तुलसी, नानक, सूरदास, मीराबाई, एकनाथ, तुकाराम और नरसिंह मेहता ने आराधना की, तपस्या की और वो सफल हुए। हरि दर्शन का प्यासा भक्त ईश्वर से कई सवाल करता है कि उसमें क्या कमी है, उसकी भक्ति में क्या कसर है कि परमात्मा उससे इतनी दूरी बनाए रखता है।